आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 19 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी

0: दारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए क्योंकि खुशियाँ आपका इंतजार।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर आप जी माफ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं इस

लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग आठवां आप सुनेंगे। सुबह 7 बजे आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम हेरा ही प्यार की ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति रामकरण मीणा। प्रसारण का समय 10:00 बजे।

समय सुबह 10 बजे रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे 12 बजकर 5 मिनट पर यादों की महफिल सजाई जाएगी दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी अपराध बोध से बचना जरूरी मुहावरों की दुनिया आंखों का तारा होना उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी बातें हल्की फुल्की परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे ये आप सुनेंगे पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने शाम 6:30 पर झरोखा 6:35 पर संध्या रंजन फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना लेखन ब्रजभूषण का है निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए रात्रि 10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर ममता सिंह का 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193

के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आगाते।

0: चरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हो, चाहे डीवी पलुस्कर जी हो, चाहे पंडित जसराज जी हो, या भीमसेन जोशी जी हो, या किशोरी आमोनकर जी हो, सब भजन गाते हैं। गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है, लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

0: अहिंसा जोशी जी, उनके भजन गांव गांव में गाए जाते हैं
1: जी।
0: लोग अपने कार्यक्रम को उनके भजन से ही समापन करना पसंद करते हैं।

ऐसे कोई गायक हैं ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए तो सबका दिल जीत लिया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी, नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए? अनूप जी आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाए, ऐसी लागी लगन जैसे।
0: क्या बात है।
1: हे राम जैसे, शाम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी, लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। तो कोशिश यही की जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे।
0: जी, अब अनूप जी चलते चलते आपके किसी भजन का मुखड़ा हमें सुनाएं।

0: राम नाम अति मीठा है। अनूप जी, आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला।

0: हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
5: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पूजा नारायणिया, आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, मन में नाचे मन की उमंगे।

बेकसूर फिल्म से अभी लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया की पार फिल्म से। गीतकार हैं मोती, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की। सुनिए ये गीत।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना नदिया के प्यार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल है, तर्ज बनाई है नौशाद अली ने। फिल्म का नाम मेला।

मेला फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आपने सुना। अब सुनिए कमल के फूल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्याम सुंदर का संगीत, और इस गीत को गाया है सुरैया ने।

हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR पर भी। सुबह के 7:15 हुए हैं। आपको बता दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:30 का समय होगा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का। इसमें आज की बात का विषय होगा विश्व खेल दिवस। साथ ही भेंट वार्ता सुनिएगा स्तन कैंसर जागरूकता ही बचाओ। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा, वरिष्ठ एंडोक्राइन सर्जन एवं ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ। आपसे बातचीत की है संजय धर द्विवेदी ने। 9:00 का समय होगा आपके संदेश आपके गीत का। 9:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:30 से लेकर 12:30 तक। 12:30 पुनः हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम लोक रंग। अवधि लोक गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। 1:00 कुछ तुमने कहा, 2:00 गीतांजलि और 2:30 पर हमारी बहनें सुनेंगी कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें चर्चा होगी हजारी प्रसाद त्रिवेदी पुण्यतिथि, सुरक्षित हो बचपन और खुशहाल हो बचपन, इस पे होगी चर्चा। साथ ही साथ भेंट वार्ता सुनेंगे स्पीच थेरेपी की आवश्यकता और महत्व पर। वार्ताकार हैं आकाश सैनी, स्पीच थेरेपिस्ट। 3:00 से आप विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ जाएंगे 5:00 तक। 5:00 हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, इसमें चर्चा होगी विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर। भारतीय इतिहास में जानेंगे नाना साहब पेशवा द्वितीय और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वार्ताकार है अभिषेक कुमार जायसवाल। चक्रव्यूह में बातें होंगी, साथ ही साथ गीत और अगले दिन के कार्यक्रम की जानकारी होगी। 5:30

0: बजे का समय होगा लोक संगीत का। शाम 6:10 पर सुनेंगे शाम सुहानी गूंजे स्वर गांव के, 6:30 पर, और 6:45 का समय होगा किसानवाड़ी कार्यक्रम का। इसमें आज चर्चा होगी मेंथा की खेती के बारे में, साथ ही भेंटवार्ता सुनिएगा गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। वार्ताकार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य, प्राध्यापक पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। शाम 7:30 से पुनः विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से आप जुड़ेंगे। 8:15 का समय होगा गीत गुंजन का। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे महफिली गजल, और 9:30 का समय होगा हेलो अयोध्या का। 10:00 राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण, 10:30 पर पुनः विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः के 7:18 हुए हैं। कुछ संदेशों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: मन में ये संकल्प बनाए,
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

0: अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर

0: दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं

0: कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें।

0: की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

इति ही निराली है। मर्यादा, प्रेम, त्याग और करुणा, यही है हमारे राम जी की संस्कृति, हमारी पहचान। जहाँ राम की संस्कृति की रीत निराली, हर जन के मन में बसने वाली।

संकट को हरने वाले, भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, शक्ति भक्ति और समर्पण के प्रतीक पवन पुत्र श्री हनुमान, जिनके नाम मात्र से मन में साहस और विश्वास जाग उठता है।

0: हीट स्ट्रोक लू यानी तेज गर्मी जानलेवा हो सकती है। घर से निकलते समय सिर ढक कर रखें। इसके लिए कपड़े हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
0: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
1: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
0: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
1: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर ना जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
0: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें। ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
3: राम नाम जिनके रोम रोम में बसता है, भक्ति जिनकी शक्ति बनकर जग में चमकती है, ऐसे ही संकट मोचन भक्त शिरोमणि हनुमान जी हर भक्त के जीवन में भर देते हैं नई उड़ान। तो हम तो यही कहेंगे, क्या करेंगे हीरा मोती जब प्रभु

0: श्री हनुमान जी,
1: ते कृतम कार्यम देवै चरण।

सुरों में डूबा ये सुहाना सफर अब यही समाप्त होता है। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव सुख शांति और श्रद्धा का प्रकाश बना रहे, इसी कामना के साथ दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी भक्ति और संगीत के नए रंगों के साथ। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से

0: डेटा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
0: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका

0: फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिम

0: में उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। आप हमारे इस कार्यक्रम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रमों से। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गीत गजलों का कार्यक्रम सुर संगम।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

तो बात है गजलों की फिजाओं में, वरना यूं ही दिल किसी की याद में नहीं बहकता। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुर संगम में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह, लेकर आई हूं गजलों की एक खूबसूरत महफिल, जहां हर शेर में एहसास है, हर धुन में दिल की आवाज है। दोस्तों आज की इस महफिल में होगी कुछ ऐसी गजलें जो कभी दिल को छुएंगी, तो कभी यादों को जगाएंगी और कभी मुस्कुराने की वजह बन जाएंगी। तो तैयार हो जाइए शब्दों और सुरों की इस महफिल के लिए।

होने से ही रोशन मेरी दुनिया सारी है, तेरे होने से ही रोशन मेरी दुनिया सारी है, तू पास हो तो हर पल जैसे जन्नत सी प्यारी है, मेरी हंसी मेरी खुशी मेरी हर दुआ में तू, सच कहूँ मेरी जिंदगी।

राहत फतेह अली खां के गाए इसी गजल के साथ हमारा कार्यक्रम सुरसंगम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
1: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
4: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और निश्चित ही मन मस्तिष्क से प्रसन्न भी होंगे। दोस्तों हर दिन खास होता है, जैसे कि आज हम बहुत ही खास विषय पे बात करने वाले हैं। आज है विश्व खेल दिवस, जहां बात होगी खेल भावना, युवा ऊर्जा और स्वस्थ जीवन की, क्योंकि खेल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन को भी मजबूत बनाते हैं।

आत्मविश्वास अनुशासन को भी मजबूत बनाते हैं। तो आइए जोश उत्साह और प्रेरणा के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास और टीम भावना का सबसे बड़ा पाठ है। विश्व खेल दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेल बेहद आवश्यक है। खेल हमें संघर्ष करना सिखाते हैं, गिरकर फिर उठना सिखाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए खेलों की अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बनाएं और फिट और सक्रिय रहें। खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, इससे लाभ प्राप्त कर सकते और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। खेल महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं, जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। ये साझा जुनून, समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। ये व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल रिश्तों को मजबूत बनाने और आत्मनियंत्रण, आघात से उबरने और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये बच्चों को संज्ञानात्मक, शारीरिक, रचनात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक है। खेल के अवसरों को सीमित करना बच्चे के स्वास्थ्य और विकास में सीधा अवरोध उत्पन्न करता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, नहीं, अभी खेलने मत जाओ, अभी पढ़ाई करो। सिर्फ पढ़ाई या कोई एक काम अगर आप लगातार करते हैं तो निश्चित ही आपका दिमाग थक जाता है। आप शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थकते हैं। और वही थोड़ा सा ब्रेक लेकर अगर आप खेलते कूदते हैं तो आप पुनः पूरी ऊर्जा से कोई भी काम कर सकते हैं। खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। शैक्षिक परिवेश में खेल आधारित अधिनियम को विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने का एक प्रभावी तरीका माना गया। ये अधिगम को अधिक आनंददायक और प्रासंगिक बनाने में सहायक होता है, जिससे सीखने की प्रेरणा और जानकारी को याद रखने की क्षमता होती है। दोस्तों, कोई चीज हम अगर खेल खेल में सीखते हैं तो वो हमेशा याद रहती है, और उसी चीज को अगर हम रट कर याद करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए तो हमें याद होती है, लेकिन फिर कुछ क्षणों के बाद शायद ही हम उसको पूरी तरह से याद रख पाए। लेकिन अगर वही चीज हम खेल खेल में सीखते हैं तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खेल बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें खेल को सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए, समाज में जो संघर्ष है वो भी निरंतर चल ही रहा है, निवारण और शांति निर्माण में सकारात्मक प्रभाव डालने वाला भी खेल ही माना जाता है। इसे मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 31 के तहत खेल को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ये अंतरराष्ट्रीय दिवस वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर खेल के महत्व को बढ़ाने के लिए एकजुटता का अवसर प्रदान करता है। ये विश्व भर में शिक्षा, सामुदायिक परिवेश में खेल को एकीकृत करने के लिए नीतियों, प्रशिक्षण और वित्त पोषण की मांग को संदेश देता है। तो दोस्तों, खेल केवल खेल नहीं होता है, ये हमें अंदर से भी मजबूत बनाता है, आने वाली विपत्तियों का सामना करना सिखाता है। किसी भी खेल को जब खेलते हैं और हम हारते हैं तो हार के फिर उठने का जो जोश हमें खेल सिखाता है, वही ता जिंदगी जीवन भर हमारे काम आता है। इसीलिए तो कहते हैं, जो भी करो जी जान से करो, खेलो तो जी जान से।

0: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होने वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
5: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
4: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
5: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70।

0: और अब हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ खास हम लेकर आते हैं कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं स्तन कैंसर जागरूकता ही बचाओ पर भेंट वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा, वरिष्ठ एंड्रोकाइन सर्जन एवं ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ। आपसे बातचीत की है संजय धर द्विवेदी ने, तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उसकी जानकारी उनको चाहिए होती है। ऐसा ही एक विषय इस समय बहुत व्याप्त हो रहा है, वह है स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। इससे बचने के लिए कितनी जागरूकता होनी चाहिए, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा जी को। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी की स्टूडियो में आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे उन तमाम श्रोताओं की तरफ से जो इस विषय पर जानकारी चाहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार द्विवेदी जी, और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर, बराबर पढ़ने में आ रहा है कि जो स्तन कैंसर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है
2: जी।
1: इसमें ऐसा लगता है कि जैसे जागरूकता जो है उसका एक बहुत बड़ा अभाव है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कितना कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर।
2: देखिए, महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर्स में से ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, जो सबसे
1: कॉमन कैंसर है।
2: अपने ही देश में नहीं, विश्व में सब जगह ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पोजीशन पे है। अच्छा। कि सबसे कॉमन कैंसर होने में। तो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में एक मिनट में 3 नए केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो रहे हैं पूरे विश्व भर,
1: पूरे विश्व में।
2: अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है 1.5 से 2 लाख नए केसेस प्रति वर्ष डायग्नोज हो रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन समस्या है और इसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। अगर हम अपनी क्लिनिक में देखें तो अगर हम 100 मरीज देख रहे हैं जो ब्रेस्ट में गांठ लेके आते हैं, तो सारी गांठें कैंसर की नहीं होती, मुश्किल से 10% कैंसर की होंगी और बाकी 90% हो सकता है साधारण गांठें हो,
1: लेकिन 100%
2: लेकिन हाँ, लेकिन गांठें हैं तो उसका जो है जांच होना जरूरी होता है, है बहुत कॉमन समस्या।
1: ये एक चीज मेरे मन में आई सर, क्या पहले ऐसा नहीं होता था या पहले बिल्कुल जागरूकता नहीं थी जिसके कारण लोग जान ही नहीं पाते थे, हमारी बहनें माताएं कभी चर्चा ही नहीं करती थी
2: जी? देखिए, एक तो जागरूकता का अभाव के कारण और दूसरा शर्म के कारण अपनी सोसाइटी में इस चीज पे चर्चा करना जो है थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ, अच्छा नहीं,
2: तो इसलिए महिलाएं, और जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें महिलाएं पहले परिवार, फिर घर, फिर अपने आप को देखती हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो और ऐसे ही इस चीज को वो बहुत निग्लेक्ट कर देती
1: हैं, सारे समय अपने पर ध्यान ही नहीं देती।
2: जी जी, तो इसकी वजह से जो है, इस अभाव की वजह से बहुत बार हम लोग बीमारी बहुत लेट पकड़ते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम लोग जो है जागरूकता फैलाते हैं।

0: तो महिलाओं को अगर उसके लक्षण पता चल जाते हैं तो वो समय से डॉक्टर को दिखा पाते हैं।
1: अच्छा, बहुत सारे लोग चर्चा तो नहीं करते हैं, लेकिन आज भी जब वो हमको सुन रहे हैं तो ये जानना चाहते होंगे क्या कुछ उसके लक्षण ऐसे हैं जो शरीर पर प्रकट होते हैं जिनसे वो सतर्क हो जाएं।
0: जी, तो जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है कि उसके लक्षण पहचाने जाएं। तो महिलाएं अगर अपने ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस करें,
1: जी,
0: और स्पेशली अगर वो गांठ दर्द नहीं कर रही है, पेनलेस गांठ हो, तो उसके प्रति जागरूक रहे। वो हो सकता है कि कैंसर की गांठ होने की संभावना रहती है, तो पेनलेस गांठ। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अगर दर्द होगा तो समस्या है, दर्द नहीं है तो समस्या नहीं है। लेकिन उल्टा है, अगर कोई दर्द नहीं कर रही है गांठ, पेनलेस पड़ी हुई है गांठ, तो वो ज्यादा समस्या का कारण हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है निप्पल से किसी प्रकार का मटमैला गंदा पानी या खून का रिसाव आना। अगर वो रिसाव आता है, बहुत सारे रिसाव निप्पल से कुदरती तरीके से आते हैं, जैसे दूध का रिसाव होता है या कभी कभी पानी का रिसाव होता है, वो उतने खतरनाक लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर मटमैला गंदा पानी या खून आ रहा है तो वो एक लक्षण स्तन कैंसर का हो सकता है। दूसरा, अगर बगल में कांख में गांठ हो जा रही है तो वो एक लक्षण होता है। अगर निप्पल के आकार में
1: क्या ये गांठ रहती है, कांख में बराबर बनी रहती है या बनती भी
0: नहीं, अगर कैंसर पर बढ़ गया है तो फिर वो ब्रेस्ट से बगल में गांठ आने की समस्या होती है। तो एक कभी कभी ब्रेस्ट में भी गांठ नहीं महसूस होती है, सीधे कांख में जो है एक्सिला में गांठ महसूस होती है।
1: जी,
0: निप्पल के आकार में परिवर्तन होना ये भी एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी निप्पल अंदर धंसना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल कहते हैं। तो निप्पल के रिसाव के साथ अगर आकार में परिवर्तन आ रहा है तो वो एक लक्षण हो सकता है। या स्तन की खाल मोटी हो रही हो, लाल हो रही हो, तो वो एक लक्षण हो सकता है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो एक पेनलेस गांठ होना ब्रेस्ट में, निप्पल के आकार में परिवर्तन आना, निप्पल से रिसाव आना, बगल में गांठ होना या खाल में कोई परिवर्तन होना, ये लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिसको महिलाओं को पहचानना चाहिए।
1: खुद में अगर यदि इस तरह कोई चीज दिखे तो तुरंत हमें सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर से संपर्क करें।
0: जी,
1: कितना रिस्की होता है ये, क्या ठीक हो सकता है, किस स्टेज में ठीक हो सकता है?
0: देखिए, कैंसर का नाम सुनते ही थोड़ा सा सबको भय तो हो जाता है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मैं अपने सारे श्रोताओं को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि यदि ये बीमारी समय से पहले दूसरे चरण में पकड़ी जाए तो इसका भरपूर जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो भय तो होता है, लेकिन इससे डरना नहीं है,
1: लड़ना है इससे
0: लड़ना है। तो इसलिए जागरूकता रखें, समय से डॉक्टर के पास पहुंचे और समय से अपना इल्ज करें।
1: डॉक्टर प्रतीक मेहता जी, कई बार जैसे अभी आपने कहा कि जानती समझती देर हो जाती है, जल्दी कैसे जान सकते हैं हम इसको, जिससे कि उस खतरे में न जाएं,
0: जी,
1: इसका निदान हो जाए।
0: जी, देखिए, मैंने जैसा कि आपसे बोला कि ये गांठें यूजुअली दर्द नहीं करती है, पेनलेस गांठें होती हैं, तो इनको एक्टिवली ढूंढने की जरूरत पड़ती है या एक्टिवली मरीज को पहचानने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग महिलाओं को जागरूक करते हैं कि हर महिला को महीने में एक बार 35 साल की उम्र के बाद अपने स्तन को खुद टटोल के देखने की आदत डालनी चाहिए।
1: जी,
0: महीने में एक तारीख कोई एक बांध लें, अगर मासिक नियम से हो रहा है तो बेस्ट टाइम होता है जिस दिन मासिक धर्म खत्म हो रहा हो, उसके बाद अपने आप को नहाने जाने से पहले स्वयं अपने ब्रेस्ट को चेक करने की आदत डालें। इसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब स्वतः अपने स्तन को टटोल के देखने की आदत, ये हर महिला को करनी चाहिए 35 साल की उम्र।
1: जी,
0: और उसमें आप नहाने से पहले लेट के चपटे हाथ से अपने बाएं स्तन को दाहिने हाथ से टटोल के देखें,
1: लेट के
0: भी करना है, बैठ के भी करना है। लेट के आप टटोलेंगे तो छाती के अगेंस्ट आप देख पाएंगे, तो बाएं स्तन को दाहिने हाथ से टटोल के देखना है और दाहिने स्तन को बाएं हाथ से चपटे हाथ से उठा के नहीं देखना है, और कोई गांठ अगर महसूस होती है तो वो देखना है। बाकी एक शीशे के सामने खड़े होके या बैठ के आप देखें अपने निप्पल, दोनों निप्पल्स को तुलना करें कि कोई आकार में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, कोई खाल में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, और निप्पल को थोड़ा स्क्वीज करके दबा के देख लें कि किसी प्रकार का रिसाव तो नहीं आ रहा है, और रिसाव अगर आ रहा है तो समय से डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही में आप बगल में कांख में एक्जिला में अपने आप को टटोल के देख लें कि वहां कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है, और ये प्रक्रिया हर महीने नियमित तरीके से करने की जरूरत है। और यदि ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण एक बार देखने में लगता है कि ये पिछली बार नहीं था और इस महीने हमको महसूस हो रहा है, तो समय से विशेषज्ञ को दिखा के इसको जांच करा ले। जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, लेकिन अगर शुभ है तो दिखा लेने में कोई हानि नहीं है।
1: एक चीज मेरे मन में आया जो मैं आपसे जरूर पूछा चाहता हूं अपने श्रोताओं के लिए, कि वैसे तो शहर में बहुत सारे फिजिशियन रहते,
0: जी,
1: क्या इन्हीं लोगों को दिखाना है या कोई एक अलग विशेषज्ञ?
0: देखिए, हर चीज के विशेषज्ञ होते हैं, हर स्पेशलिटी, हर बीमारी के विशेषज्ञ अलग होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के विशेषज्ञ जो होंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर में डील करने वाले सर्जन होंगे, जैसे ऑंको सर्जन हो गए, एंडोक्राइन सर्जन हो गए, तो हम लोग सब जो विशेषज्ञ होते हैं इस फील्ड में, वो शायद इसके बारे में आप मरीज को ज्यादा
1: सेवाएं दे सकते हैं।
0: जी जी,
1: आप लंबे समय से मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं
0: जी,
1: क्या आपने कभी महसूस किया कि इसको

0: करके बहुत सारी भ्रम भी फैलते हैं।
1: देवी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा हमसे।
0: सर
1: देखिए, सबसे बड़ा भ्रम तो यह है कि अगर कैंसर हो गया है तो ये जानलेवा है। तो इस भ्रम को मन से निकालें। अगर समय से कैंसर का डायग्नोसिस बन रहा है तो इलाज भरपूर है
0: जी,
1: तो ये भ्रम मन से निकालना होता है। उसके अलावा हमने जैसा भी ये बताया था कि लोग सोचते हैं कि अगर दर्द नहीं है तो समस्या नहीं है, ये भ्रम गलत है। अगर दर्द नहीं है तो वो गांठ खतरनाक होने की समस्या हो सकती है, तो ये भ्रम भी अपने मन से निकालने की आवश्यकता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है वो सिर्फ बुजुर्गों में होता है, यंग फीमेल्स में, बच्चों में नहीं होता। तो हाँ, उसमें इंसिडेंस कम होता है, चांसेस कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है
0: वैसे
1: चांसेस बढ़ते हैं। तो ये ना सोचे कि सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, तो ये भ्रम मन से निकाल दें। 30-35 साल के बाद होने की संभावना धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। दो तीन और भ्रम है, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चोट लगने से कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर किसी बुजुर्गवार को कभी बच्चे का या पोते का या पोती का सर लग गया तो उससे जो है चरस दर्द शुरू हुआ, तब वो टटोल के देखती है तो उनको गांठ महसूस होती है, तो वो तो सोचती है कि चोट लगने की वजह से कैंसर हो गया। तो ये एक भ्रम है कि चोट लगने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन वो चोट लगने से उस गांठ के बारे में पता चलता है,
0: बीमारी जो पहले से पनप रही
1: है। जी, एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि अगर गांठ है तो हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सुई की जांच बता देंगे। हाँ। और सुई की जांच किसी भी ट्यूमर में करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी।
0: ये आम बात,
1: ये बहुत आम भ्रम है। हाँ। जिसके बारे में मैं श्रोताओं को जागरूक कराना चाहूंगा कि सुई की जांच, चाकू लगने से, ऑपरेशन होने से कोई भी ट्यूमर नहीं फैलता है। सुई की जांच करके हम लोग मरीज में ये देखते हैं कि वो साधारण गांठ है या कोई दूध की गांठ है या इन्फेक्शन की गांठ है या कैंसर की गांठ है, तो वो हम लोग को डायग्नोसिस बनाने में मदद करता है और वो किसी भी प्रकार से मरीज की बीमारी को
0: बढ़ाता
1: नहीं है। तो ये एक भ्रम है जो हम अपने श्रोताओं को जागरूक करना चाहेंगे कि सुई की जांच से बीमारी नहीं फैलती है। बहुत सारे परिवारों में देखा गया कि किसी एक परिवार के सदस्य को कैंसर हो गया है तो लोग उसको छुआछूत की बीमारी मानती है, खाना अलग कर देते, कमरे में अलग कर देते। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है और साथ में रहने से और छूने से और साथ में खाना खाने से ये फैलती नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि कैंसर हो जाने से ये ना सोचे कि जीवन काल समाप्त हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा लक्षण देखे तो समय से डॉक्टर से मिलके इस गांठ का जांच करा लें। कैंसर भरपूर तरीके से समय से अगर इलाज किया जाए तो इसका इलाज,
0: यानी इसका इलाज संभव है।
1: जी जी जी जी,
0: तुरंत प्रकाशन लेकर के अगर हम उचित डॉक्टर से अगर मिलते हैं, परामर्श करते हैं, तो इसका इलाज संभव है।
1: जी जी,
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा जी, आप ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हैं। आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने स्तन कैंसर के संबंध में, उसकी जागरूकता के संबंध में और उसके भ्रम के संबंध में और बचाव कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें आपने हमारे श्रोताओं को बताई। आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, स्तन कैंसर जागरूकता ही बचाओ। वार्ताकार थे डॉक्टर प्रतीक मेहरोत्रा, वरिष्ठ एंडोक्राइन सर्जन एवं ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ। आपसे बातचीत की थी संजय धर त्रिवेदी ने।

दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय का हाल आप देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव के हीट स्ट्रोक्स भी लग सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है, हम ये भी जान लें। गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना ना आना, पल्स का तेज होना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, सिर दर्द, मितली, थकान और कमजोरी होना, चक्कर आना, मूत्र न होना या कम होना, हीट स्ट्रोक के चलते मनुष्यों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होते हैं, ये भी हम बता दें कि अगर आपको हीट स्ट्रोक का कारण है तो वो ये है कि उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों में, विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है तथा शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। मनुष्य के हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40 डिग्री से सेल्सियस यानी 105 डिग्री फॉरनहाइट या अधिक तापमान अथवा गर्म हवा में रहते हैं, उनके मस्तिष्क में क्षति होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो दोस्तों, अपने आप को बिल्कुल भी बचा के रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिए। और अब

0: चलते चलते नजर समाचार पत्रों पर। अयोध्या से गुजरने वाली कई ट्रेनों का मार्ग बदला। लखनऊ होकर चलने वाली ट्रेनें अब सुल्तानपुर और अयोध्या कैंट रूट से होकर चलेंगी। लू के थपेड़ों से तपा शहर, पारा 42 डिग्री पार। लोड बढ़ने से जल रही है केबल, धड़ाधड़ खराब हो रहे हैं ट्रांसफार्मर। अवध के बाद अब कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को नो व्हीकल डे। अवध विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू हुआ। पहले दिन बड़ी कार्य गति। जीआईसी में जल्द शुरू होगा इंडोर मिनी स्टेडियम का काम। राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अयोध्या का दमदार प्रदर्शन। डीएम ने निरीक्षण कर परखे इलाज के इंतजाम और प्रयोगात्मक 6 व सीबीटी परीक्षा 9 जुलाई से। अब इसी के साथ दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या से।
1: प्रणाम अयोध्या।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। साथ ही आप हमको सुन सकते हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
2: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
2: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
3: फोन नंबर 91-61-877-347।
4: हेलो
5: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
6: माय नंबर इज
2: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन
3: जग घूमे आथर जैसा न कोई
0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान
2: तो देर क्यों जनाब किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर
0: ayodhyaakashwani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या

आपके संदेश आपके गीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, इस गर्मी में बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल भी धूप में ना निकले। कोशिश करें कि 11 या 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी धूप में ना निकले, और अगर आपको निकलना ही पड़ रहा है तो पूरी सावधानी से निकले। पानी की बॉटल, सर को ढककर, शरीर को पूरी तरह से ढककर ही निकले। जरूरत है इस समय अपने आप को बचाने की, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज है और आपकी तबीयत को भी खराब कर सकती है। अगर आप ज्यादा देर धूप में रहे तो निश्चित है कि आपकी

तबीयत खराब होगी, भाई हम ऐसा क्यों चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप लोग सावधानी से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बिल्कुल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जो पसंद किया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने फिल्म लाल दुपट्टा मलमल से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में।

दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा तो हमें संदेश भेजिए, हमसे बातें कीजिए। संदेश आप हमें फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। भाई, आपके संदेश हम तक पहुंचेंगे तभी तो आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। तो बिल्कुल आप अपने संदेश हम तक पहुंचाएं और सुनिए अपनी पसंद के वो गीत जो आप चाहते हैं सुनना। अब हम बता दें कि हम आप हमें संदेश भेजेंगे 8303-2199-11 पर। इस नंबर पे आप हमें ASAG टाइप करें, फिल्म गीत के बोल, गीतकार, संगीतकार और अपना नाम और पता लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाइए और सुनिए कहीं भी कभी भी अपनी पसंद का गीत। और अब समय है कार्यक्रम के अगले गीत का, तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म हीरा पन्ना से। पसंद करने वाले श्रोता है आप सभी, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और सेवांश वर्मा। तो पेश है आपकी पसंद का ये गीत जो जा रहा है सीधे आपकी रेडियो सेट पे।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

बिल्कुल, हमें पता है कि आपको इंतजार है कार्यक्रम के अगले गीत का और किन श्रोताओं ने सुनना चाहा है ये भी आप जरूर जानना चाहेंगी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्रेम रोग से और पसंद करने वाले श्रोता है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ और कालिया। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश दो रास्ते के गीत के लिए पसंद करने वाले श्रोता हैं नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, कैफे खान, अमीन खान और अयान खान। पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत फिल्म दो रास्ते से।

0: और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, सुबह के 9:30 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
4: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
5: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि आप वेट कर रहे हैं अपनी कॉल के लगने का, कि आपकी कॉल लगे और आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएं, थोड़ा सा कुछ जानेंगे आपके बारे में, सुनेंगे आपकी जुबानी अपने इस कार्यक्रम में। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हाँ मैडम नमस्ते।
0: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे।
1: मैं अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रमना, अयोध्या।
0: जी बिल्कुल, आपके एड्रेस तक हम पहुंच गए, अयोध्या से ही आपने कॉल किया। सर क्या करते हैं आप?
1: जी मेरी दुकान है मैडम, पान की दुकान पर बैठे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पूरे प्रोग्राम आप सुनते हैं?
1: प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है मैडम, क्या अच्छे हैं।
0: अच्छा लगता है। कौन कौन से कार्यक्रम आपको हमारे यहाँ के अच्छे लगते हैं?
1: आप यहाँ प्रोग्राम जो 12:30 बजे आता है, एक से अवधि लोकगीत।
0: जी जी,
1: वो बहुत अच्छा है।
0: जी बिल्कुल, हमारे
1: प्रोग्राम है तो बहुत अच्छे हैं आपके प्रोग्राम।
0: जी, हमारी संस्कृति से हमको जोड़ता है लोकगीत जो हमारा है।
1: जी जी मैडम।
0: अच्छा सर, इस समय तो बहुत धूप हो रही है और इस समय आपको मतलब
1: गर्मी बहुत ज्यादा है, सुखद क्या बताएं। जी धूप भी बहुत तेज होती है।
0: जी बिल्कुल, आपकी आवाज से लग रहा है कि धूप से आप भी परेशान हैं। तो
1: अरे क्या किया जाएगा फिर?
0: बस ये करिए कि अपने आप को बचा के रखिए, धूप में कम निकलिए, पानी वगैरह पीते रहिए, और जो लोग आते हैं अगर उनको भी हो सके तो पानी पिलाते रहिए, क्योंकि भाई किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो इतना सा काम तो हो सकता है सर। साथ ही हमारे कार्यक्रमों से भी आप जुड़े रहिए। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सुबह से शाम तक चलता ही रहता, मेरे पास दो रेडियो मैडम, एक घर पे है, सुबह 6 बजे खुलता है वो।
0: जी
1: 8:30 बजे तक घर पे रहते हैं, उसके बाद दुकान पे आते हैं, आपका प्रोग्राम चल रहा है दुकान पे।
0: जी सर, जी सर, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म है कच्चे धागे मैडम, पुरानी वाली।
0: जी जी, कच्चे धागे का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी वही जा रहे जाओ दीवाने, तो क्या जाने अनजाने।
0: अर्जुन जी, आपकी पसंद का गीत, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: जी मैडम,
0: कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी जी मैडम।
0: पेश है आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी बिल्कुल है। जब हम बातें करते हैं ना, तो जब भी हमारा मुंह खुलता है तो पता चल जाता है सामने वाले को कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हैं। और इसलिए हमेशा जो भी बोले तोल मोल के बोले। चलिए अब देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं हमसे बात करने के लिए। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। कहाँ से सुन रहे हैं सर आप रेडियो?
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से सुन रहा हूँ।
0: बहुत दूर से तो आपने कॉल किया, लग गई कॉल?
1: जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मोबाइल के जरिए ये दूरियां बिल्कुल नजदीकियां बन चुका
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 साल भी पूरे हो रहे हैं। देखिए दूरियां नजदीकियों में बदल गई है, कोई कहीं भी है तो हमारे कार्यक्रमों से जुड़ा है आकाशवाणी अयोध्या से भी। तो सर आप त्रिपुरा से सुन रहे हैं, तो आपको हमारे कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और कब से आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रमों को?
1: जी मैं 2 साल से सुन रहा हूँ और जो कार्यक्रम आता है योगवाणी वो मुझे बेहद ही पसंद है। उसके बाद जो जानकारियाँ मिलता है, जो क्या बोलते हैं आपका आंचलिक जो वहाँ पर मतलब की वो जानकारी मिलता है वो भी अच्छा लगता है। उसके बाद जो किसानों के लिए कार्यक्रम आता है वो भी अच्छा लगता है। इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलता रहता है, तो हम सभी इसमें से बहुत प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए।
0: अविनाश जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो रेडियो का प्रोग्राम है इतने दूर तक लोग और इतनी चाहत से सुनते हैं कि हमारे कौन कौन से कार्यक्रम है, क्या समय है उनका, ये भी आपको पता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आज मुझे डार्क द फायर मूवी से परदेसी इतना बता ये गीत मुझे सुना दीजिए अमृता पवार जी की आवाज में।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनाएंगे। बस एक चीज और पूछना चाहेंगे सर कि इस समय आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: जी हमारे यहाँ पर मौसम तो देखिए हल्का हल्का बारिश हो रहा था सुबह, लेकिन अभी देखिए धूप खिला हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी का एहसास अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश के कारण वो गर्मी बिल्कुल अभी नहीं है, ना के बराबर है।
0: देखिए आप तो बहुत अच्छे मौसम है फिलहाल यहाँ, मतलब अगर आप प्रोग्राम हमारे सुन रहे हैं तो ये भी पता होगा कि यहाँ तो बहुत धूप हो रही है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको उधर तो 44-45 डिग्री उधर मतलब की तापमान बना हुआ है और इसमें लोगों को तो इसका जो खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि प्रकृति से हम तो छेड़छाड़ करते हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रकृति के साथ जो छेड़खानी होती है उसका भुगतान तो करना ही होगा, इसीलिए कहा जाता है कि बराबर पेड़ पौधे लगाएं। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहें, हम तो आपसे यही कहेंगे और रिक्वेस्ट है कि जो जहां है हमारे कार्यक्रमों से जरूर जुड़ा रहे, हमसे बातें करें, हमारे कार्यक्रम में शामिल है। थैंक यू सर फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह। कार्यक्रम में देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
5: हेलो मैम, नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
5: थैंक यू मैम।
4: कहाँ से फोन किया, अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं।
5: मेरा

0: सपना सिंह है, सॉन्ग डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
1: अयोध्या से आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे आज, पहले तो हमको ये बताइए।
0: मूवी है चमेली और सॉन्ग है मैं तेरी हो गई यार।
1: जी बिल्कुल जी जी, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। सपना जी एक चीज बताइए, जैसे इस समय मौसम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और आने जाने वाले जो लोग सड़क पे आ जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
0: अपने आकाशवाणी के माध्यम से मैं यही कहूंगी मैम कि दोपहर में बिल्कुल भी ना निकले, मॉर्निंग टाइम में जो भी वर्क करना है कर ले या फिर शाम में निकले।
1: जी बहुत अच्छी बात। सपना जी कब से सुन रही हैं आप रेडियो?
0: बचपन से।
1: बचपन से, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता है फिर हमारी।
0: हाँ मैम।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि आपसे बातचीत हुई। कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं और क्या सुझाव देना चाहती हैं हमारे इन कार्यक्रमों के लिए आप?
0: मैम मुझे अपने आकाशवाणी अध्यक्ष के कि आओ सभी प्रोग्राम मैम अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब प्रोग्राम एक से बढ़ के एक है। बट मैम जो हेलो अध्यक्ष एनी टाइम आ रहा है, मॉर्निंग में भी है, नाइट में भी आता है
1: जी,
0: तो ये जो मॉर्निंग में इसके जगह पे प्राइवेट जो गाने होते हैं एल्बम सॉन्ग, उसका आप लोग जब अपनी चॉइस का प्ले करेंगे तो हम लोग को और अच्छा लगेगा।
1: वाह बहुत अच्छी बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सपना जी। आपकी पसंद
0: मैम, आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, आपको नजर ना लगे।
1: थैंक यू,
0: मेरा कॉल रिसीव करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: जी बिल्कुल, आप हमें फिर कॉल जरूर करिएगा। धन्यवाद। जी जी
0: बताइए। ये गाना मैं जितना भी हेलो वो हेलो सैली का प्रोग्राम लेकर आती हूँ मैम,
1: हाँ
0: उनको डेडिकेट और स्पेशली आपको भी डेडिकेट करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी हमें ऐसे ही अपना प्यार और ऐसे ही अपने संदेश हम तक पहुँचाते रहें।

0: कार्यक्रम में हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
1: जी।
0: क्या नाम है सर, अपने बारे में कुछ

0: बताएं हमें।
1: मैम ममता यादव बोल रहा हूँ, यहाँ भाईपुर बारू नजार अयोध्या से।
0: जी सर, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम वो शाम के पास लेकर टाइटल सॉन्ग।
0: सर आप अयोध्या से बोल रहे हैं?
1: ये भाईपुर बारून बाजार से 15 किलोमीटर आउटलेट है।
0: बारून बाजार से?
1: हाँ।
0: क्या करते हैं सर आप?
1: मैम हम ये स्कूलों से आर्डर लेके स्कूल जो है वो थोक में बनवा के दुकानदारों को देते हैं।
0: अच्छा सर, आप कार्यक्रम हमारे कब से सुन रहे हैं?
1: मैम कार्यक्रम तो आपका सन 2000 से चल रहा है।
0: 2000 से बहुत लंबा समय है और आप हमारे बहुत पुराने श्रोता भी हो चुके हैं। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैम सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या अच्छा है और क्या सुधार हमें और करने चाहिए? हमारा आकाशवाणी 90 साल पूरे कर चुका है।
1: मैम अब सुधार तो नहीं बता सकते, लेकिन मतलब जो भी कार्यक्रम है सब अच्छे हैं।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस फिल्म का गाना आपने बताया? जी बिल्कुल, आप कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

जी बिल्कुल, चलते चलते एक कॉलर से हम बात और ही कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, ऐसा लगता है कि कॉल उनकी नहीं लग पा रही है। हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम और शायद इनकी कॉल लग नहीं पाई।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: आप लोगों से हुई हमारी बातचीत बहुत अच्छा लगा, हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। तो दोस्तों जाते जाते हम इतना कहेंगे कि आप जहां भी हैं थोड़ा सा पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, थोड़ा सा दाना डाल दें क्योंकि धूप बहुत है तो इनको भी ज़रूरत है। तो आप अगर हो सके तो घर के बाहर पानी और दाना डालकर ज़रूर रखें। साथ ही अब दीजिए इजाज़त हमें इस कार्यक्रम से।

अभी आप सुन रहे थे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर

0: और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
1: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी,
0: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
1: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
1: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था।

0: और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: क्या गया?
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे,
1: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@

0: cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई

0: नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
1: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
2: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
1: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
1: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
1: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरा माँ,
1: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
5: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
5: गौरा माँ,
1: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
5: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।

0: अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: सुनो, आगे बढ़ो।
3: अरे कहां से आए?
2: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
3: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
4: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
3: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
5: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।

0: प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप एक बार फिर से आनंद लीजिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का।
1: विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
2: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है। हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है, लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में। हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं, तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
2: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है,
1: जैसे
2: फल हो गए, जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं। ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता
1: है। ऑरेंज है,
2: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना

0: पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है, तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है, जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी

0: स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है. तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं. तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे.
1: जी.
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर. तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है. इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो. तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का. और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है, यानी शाकाहारी सोर्सेस है.
1: जी.
0: ये मेजर सोर्सेस है. इसके अलावा भी काफी सारे हैं, बट ये तो ज्यादा जरूरी है. और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है.
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है.
0: जी. और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है.
1: जी.
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं. तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है, क्योंकि वो सिट्रस भी है. पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है. तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: हैं,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू, जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है. सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है. अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स, जो सींग होती है, उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है. इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची.
1: ओहो.
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में. तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे.
1: जी जी. और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा.
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए.
1: अच्छा.
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है. तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है. और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे. जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं. वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़, नट्स हो गया, जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है. पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा. तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है. इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए. हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स, हर सब्जी रोटेशन पे रखो. जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे.
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए.
0: इश्क बुलावा, हंसी तो फंसी पिक्चर से.

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक 5 चीजों से बनता है। सिर्फ ये 5 चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो 5 चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है, और आ जाता है मेरा फैट यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं, तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है,

0: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीज ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बन करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतने ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है, एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
1: है। जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया, रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन के

0: कला लगेगी
1: जी।
0: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन है, तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है, विटामिन्स इम्पोर्टेंट है, सोर्सेज इम्पोर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।

रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए

0: चलते हैं सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षी बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
3: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वो अमन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधी लोकगीतों से सजा कार्यक्रम लोक रंग।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: आपकी बात कार्यक्रम में,
4: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
3: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
4: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
5: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
4: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
5: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
6: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
6: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com।
7: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
0: लोक रंग सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति बेचैन राम और साथियों की आवाज में।
8: की आवाज चली खेत

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आप सुन रहे थे अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है फेसबुक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: ईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
4: और भाई साहब क्या हाल है?
5: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
4: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
5: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
6: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
7: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
6: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
7: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
6: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
7: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
8: कुछ तुमने कहा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतहर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आज इस कार्यक्रम में सबसे पहली फरमाइश हमें मिली है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी की, और आज उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म अनजाना का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और दोस्तों साथ ही में इसी गीत को हमारे और भी कई श्रोताओं ने सुनना चाहा है, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी ने, कालका से शुभ चंद्र बजाज ने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ने, मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा ने। और दोस्तों अब इसी गीत में हम शामिल करेंगे अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश मिड्डा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, सदर बाजार कुरावली से अनिल वर्मा, ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, ग्राम पंजौलिया पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, किशनगंज बिहार से रविंद्र दास, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अनजाना फिल्म का ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ की, और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म प्यार झुकता नहीं का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। और दोस्तों इसी गीत को हमारे और भी कई श्रोताओं ने सुनना चाहा है, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मुड़त, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीर सोनी, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, सनावत से शेख मूसा, आदर्श नगर मलौट से राजपाल राज। और दोस्तों आइए अब शामिल कर लेते हैं अपने और भी कई श्रोताओं के नाम इसी गीत में। गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, खुर्जा उत्तर प्रदेश से अंकुश अरोड़ा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सहारनपुर से राधा नामदेव, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल। तो आइए सुनते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में।

दोस्तों कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कि अगली फरमाइश हमें मिली है बीट शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे की, और आज उन्होंने फिल्म गंगा की लहरें का गीत सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और दोस्तों इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे और भी कई श्रोताओं ने, पंचकुला चंडीगढ़ से तुलसीदास चुग ने, मानसा बस स्टैंड बस पंजाब से जगदीश राय ने, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा ने, और दोस्तों

अब इसी गीत में हम शामिल करेंगे अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, दयानंद भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु टेलर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, ग्राम चरौदाबार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, जिला खरगोन सनावद एमपी से अशोक वर्मा, पद्मा टाकीज नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म गंगा की लहरें का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

नगर गुजरात से सुरेश राठौर की, और आज उन्होंने सुना चाहा है फिल्म ममता का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप ने, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा ने, मजनू का टीला से कमल सिंह ने, छिंदवाड़ा बिरडी एमपी से नाना जी लामसे ने। और श्रोताओं, इसी गीत में हम आइए अब शामिल कर लेते हैं अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। सागर लखनादौन एमपी से भागवत चौबे लाडला जी, दादा बाबू रोड गिरीडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, जत शहर सांगली से अल्ताफ हुजरे, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार। तो आइए सुनते हैं फिल्म ममता का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
3: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
4: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
3: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान, महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
4: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
3: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
5: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
6: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
7: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
6: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
7: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे, तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
6: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
7: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
6: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

दोस्तों फेसबुक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे ने। और आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म स्वीकार किया मैंने का गीत लता मंगेशकर।

लश्कर की आवाज में। साथ ही में इसी गीत को सुनना चाहा है बेड़ा घाट रोड जबलपुर एमपी से अशोक सिंह ने, लोहरदगा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत ने। इसी गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विर्क ने। और दोस्तों अब इसी गीत में हम शामिल करेंगे अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। कुड़ी सेक्टर 5

नाम कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चौहान, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज अंसारी, ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से झग्गर राम साहू, बटिंडा रोड बड़ी डबवाली से राजेंद्र नागर नारंग। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

और दोस्तों कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में अगली फरमाइश हमें मिली है आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस की। आज इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत किशोर कुमार की आवाज में। इसी गीत को सुनना चाहा है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये ने। इसी गीत को सुनना चाहा है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी ने। और दोस्तों इसी गीत में आइए अब शामिल कर लेते हैं अपने और भी कई श्रोताओं के नाम। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन गिले, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, रामगढ़ कैंट झारखंड से कमल सावने। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर, जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: नारी जगत सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी बीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अभी तो देखा जाए तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं सभी बच्चों की, और जब भी हम देखते हैं कि कोई गर्मी की छुट्टियां मना रहा है तो अपनी छुट्टियां तो याद ही आ जाती हैं। और जब भी गर्मी की छुट्टी होती है तो मतलब ये सुखद समय माना जाता है, क्योंकि इसमें हम अपनी मनपसंद के काम करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, किताबें पढ़ना हो, कुछ लिखना हो, पेंटिंग करना हो। और मुझे तो अगर पढ़ने की बात कहूँ तो मुझे उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दोबे का छपरा ओजबलिया नामक गाँव में हुआ था। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती। इनका परिवार ज्योतिष विद्या में माहिर था। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े उदार व्यक्तित्व के थे। उन्होंने 1930 में शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य छिति मोहन के प्रभाव से साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत उन्हें डी लिट

की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, साहित्य मर्म आदि, ऐसी कई रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मार्मिक हैं और बहुत कुछ सिखाती हैं। और बहनों, अगर किताबें पढ़ने की बात करें तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, इससे हमारा जो कहते हैं ना कि ये स्क्रीन टाइम है, ये कम हो जाता है और हमें किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं। पढ़ना एक अच्छी आदत मानी जाती है और पढ़ते पढ़ते अगर हम और भी जितने भी लेखक हैं और हमारे देश के जितनी भी लेखिकाएं हैं उनको साहित्य जगत में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो और बहुत कुछ हम सीखेंगे। तो बहनों, अब किताब पढ़ने के साथ साथ हमारा एक और पसंदीदा काम है, वो करते हैं यानी कि गीत सुनना। तो सुनते हैं ये गीत, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, फिल्म बाजीगर से।

0: सकता। बचपन की सबसे जो बड़ी खूबसूरती है वो है उसकी मासूमियत। बचपन जीवन का स्वर्णिम काल होता है जहाँ ना फिक्र होती है और ना ही कोई जिम्मेदारी होती है। पर यह तभी संभव हो सकता है जब बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए और उस सुरक्षित माहौल में बचपन जिया जाए। जब हम बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल शारीरिक चोट या बाहरी खतरों पर ही जाता है, पर मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी हम बच्चों को डांट देते हैं जिस वजह से बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से भी उन्हें ठेस पहुंचती है। कभी कभी तो घर का माहौल भी बच्चों को भावनात्मक रूप से परेशान कर देता है। और साथ ही साथ आज के इस तकनीकी युग में बच्चों को इंटरनेट पर मौजूद गलत कंटेंट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन खतरों का जो बचाना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमें बहुत ध्यान से और सतर्कता से बच्चों की सुरक्षा करनी होगी। हमें ना तो बच्चों को बहुत डांटना होगा और ना ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझाते हुए इन सब की ओर बढ़ावा देना होगा। बस हमें बच्चों को ऐसा सुरक्षित माहौल देना होगा जिसमें बच्चे अपने बचपन को जी सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। बचपन हमेशा से खास रहा है, क्योंकि कहते हैं कि खुशहाली की इमारत हमेशा सुरक्षा की नींव पर रखी जाती है। और अगर बचपन हमारे बचपन जो है हमारे आने वाले जीवन की नींव होती है, अगर वो नींव सुरक्षा से नहीं बनेगी तो आगे हमारा जीवन मुश्किल हो सकता है। तो बहनों, कभी कभी बोलने में कठिनाई होती है बहुत सारे बच्चों को, और कभी कभी तो छोटे बच्चे पे जो 2 से 3 साल के होते हैं उन्हें भी बोलने में परेशानी होती है और ये परेशानी लंबे समय तक चल सकती है। तो इसी से जुड़ी जानकारी के लिए चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, स्पीच थेरेपी की आवश्यकता और महत्व। वार्ताकार हैं आकाश और भेंट करता है बबली हंसपाल।
1: मैंने बोलना यानी संवाद विचारों, भावनाओं और जरूरतों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जो मानवीय रिश्तों को मजबूत करता है। बोलना ही वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात यानी खुशी, दुख या जरूरत की चीजों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैंने हम अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को व्यक्त करने में परेशानी होती है तो यह बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसका एक उपाय है स्पीच थेरेपी। तो आज इसी विषय पर हमारे बीच उपस्थित हैं आकाश जी, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्पीच थेरेपी क्या है।
2: स्पीच थेरेपी एक भौतिक चिकित्सा है, पद्धति है जो हमें भाषा को सुधारना, समझना एवं भाषा को आसानी से व्यक्त करने और सार्थक वाक बनाने में मदद करती है।
1: अच्छा, स्पीच थेरेपी की लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ती है?
2: हर व्यक्ति की स्पीच थेरेपी की आवश्यकता अलग अलग होती है।
1: अलग अलग का मतलब बच्चों को लेकर या बड़ों को लेकर या बुजुर्गों को लेकर?
2: दोनों को, बड़ों को लेकर बच्चों को लेकर अलग अलग समस्या होती
1: है। अच्छा, ये किन लोगों में ज्यादा होती है?
2: ज्यादातर देखा गया है बड़ों में जैसे कि होता है कि लकवा हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी हो गई, पार्किंसंस हो गया, गले का कैंसर हो गया। बुजुर्गों में होता है डिफेंसिया, अल्जाइमर आदि समस्याओं में स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है।
1: अच्छा, कई बार देखा गया कि छोटे बच्चे भी होते हैं तो कई सालों तक वो बोल नहीं पाते हैं, है ना?
2: जी जी जी।
1: और अगर बोलते भी तो खाली माँ या पा करके चुप हो जाते हैं।
2: जी जी।
1: तो ऐसा क्या बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है?
2: जी हाँ, यदि बच्चे मोबाइल या टीवी, लाइट, ऑटिज्म या ADHD वाले बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है।
1: अच्छा, यानी बच्चों में अगर कोई दूसरी बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई समस्या है,
2: जी,
1: तो
2: जी।
1: उन बच्चों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।
2: जी हाँ।
1: तो इसका कोई उपाय भी है कि हम किन तरीकों से इनका इलाज कर सकते हैं?
2: इसमें तरीका यह होता है मैम, ये सबसे पहले ओरल मसाज करते हैं, क्लॉक बाई या एंटी क्लॉक बाई। इसके बाद मुंह के अंदर चाट या मसाला शहद के थ्रू टंग को इनवर्जन, ईवर्जन की डायरेक्शन में मूवमेंट करवाया जाता है। इसी के साथ सिर में मालिश किया जाता है, गले को क्लॉक बाई या एंटी क्लॉक बाई मालिश किया जाता है।
1: अच्छा, यानी मालिश करने से या फिर जो आपने बताया कि मुंह के अंदर शहद या
2: जी, जी।
1: मसाला या कुछ डालते हैं,
2: जी,
1: तो
2: हाँ।
1: क्या उनसे बच्चों में कोई दिक्कत तो नहीं होती?
2: नो मैम।
1: तो उससे आप लोग थेरेपी करते हैं?
2: जी जी जी।
1: तो क्या इसमें किसी टूल्स की भी आवश्यकता होती कि हाँ कोई ऐसा टूल हो कि जो उनको भाषा का ज्ञान करा सके?
2: जी जी, इस जो टूल्स होता है ओरल प्लेसमेंट टूल्स होते हैं, वाइब्रेशन ब्रश होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन टूल्स होते हैं, स्पीच गियर्स टूल्स होते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: बहनों जैसा कि हम सभी ने बात की कि बचपन अगर हो तो उसमें गर्मी की छुट्टियां हमारी खास होती हैं लेकिन बचपन को खास सिर्फ गर्मी की छुट्टियां ही नहीं बनाती बल्कि बचपन अगर सुरक्षित हो तो बचपन और खुशहाल हो जाता है और बहनों बचपन की अगर बात करें तो बचपन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है जिसे इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले पर अपने जीवन में वापस कभी नहीं ला

0: जी
1: यानी ये बच्चों की कौन सी समस्या है, बच्चे किस तरह अपना एक्शन दे रहे हैं, किस तरह अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये अलग अलग टूल अलग अलग बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से उनको आप यूज करते हैं।
0: जी
1: अगर बच्चे में ऐसी समस्या है कि बच्चे को स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है तो कितना समय लगता है बच्चे को सही होने में?
0: अक्सर माता पिता पूछते हैं कि स्पीच थेरेपी का असर कितने दिनों में असर दिखने लगता है। इसका उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है। बच्चे की उम्र छोटे अक्सर अधिक तेजी से प्रगति करते हैं। समस्या की गंभीरता, जिन लोगों को उच्चारण में मामूली समस्या होती है उनमें कुछ हफ्ते के भीतर सुधार होने की संभावना होती है, लेकिन गंभीर समस्या वाले लोगों को महीने या वर्षों तक समस्या लग सकता है। घर पर नियमित अभ्यास और किसी थेरेपिस्ट के परिणाम जल्दी मिलते हैं।
1: अच्छा, आपने अभी बताया कि बच्चों में ये समस्या जो है वो अलग अलग हो सकती है।
0: जी,
1: अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन खाली बोल नहीं पा रहा है तो क्या ऐसे में भी समय ज्यादा लगता है कि कुछ समय के भीतर ये सही हो जाती है?
0: नहीं मैम, इसका लगभग 2.5-3 महीने में ये सही हो जाता है।
1: अच्छा, मतलब 2.5-3 महीने।
0: जी जी हाँ।
1: तो आप थेरेपी घर पे आके करते हैं या कि बच्चों को आपके पास माता पिता लेके आते हैं?
0: ऐसा भी सुविधा है, वो घर पे भी होम विजिट की सुविधा उपलब्ध है।
1: अच्छा,
0: घर पे जाकर थेरेपी भी किया जा सकता है।
1: तो आप माता पिता या घर में कोई बुजुर्ग है
0: जी,
1: तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करें?
0: मैम, बच्चे का ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को फोन से दूर रखिए। बच्चे को फोन या टीवी स्क्रीन के दिखाने की बजाय बच्चे से लगभग 2-3 घंटा दिन में बात करें।
1: बात करना जरूरी है।
0: जी
1: देखिए, आजकल का जमाना है ना कि घर में जितने मेंबर हैं उनके हाथ में मोबाइल रहता है और माता पिता भी ये सोचते हैं कि बच्चे को मोबाइल दे दें, बच्चा कुछ देर शांत बैठा रहेगा और माता पिता भी अपने में मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो क्या ये कहाँ तक उचित है? ये बच्चे में स्पीच थेरेपी की तब जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती?
0: नहीं मैम, स्पीच थेरेपी की जरूरत भी पड़ती, क्योंकि उस समय बच्चे में मोबाइल देखने की आदत रहती है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, जो कि एयर के थ्रू प्रेशर से वर्ड निकलते हैं, जैसे था वर्ड हो गया।
1: अच्छा,
0: था हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बच्चे निकालने में प्रॉब्लम होती है।
1: अच्छा, कई बार देखा गया कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं वो नए नए जब बोलना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा तुतलाते हैं और बार बार उनको कहा जाता है कि सही शब्द बोलिए। जैसे कबूतर कहा तो वो कबूतर ना बोल के
0: कबूतर बोलते हैं,
1: कुछ अलग बोल देते हैं। तो क्या ये समस्या भी स्पीच थेरेपी के अंतर्गत आती है कि ये नॉर्मल?
0: यस मैम, स्पीच थेरेपी के अंतर्गत आती है। अगर ये बच्चे जैसे तुलतुलाने में जो प्रॉब्लम हो रही है, कबूतर को तबूतर बोल रहे हैं, तो इसमें जो हमारा ये गली होता है, गली पे हम या क्या कहते हैं किसी मॉइस्चराइजर के थ्रू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं, जिससे इससे बच्चे ठीक हो जाते हैं।
1: अच्छा, माता पिता को कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चा नहीं बोल रहा है तो हमें डॉक्टर के पास या स्पीच थेरेपी के पास लेके जाना है? किस उम्र के, मतलब किस आयु तक उनको अलर्ट हो जाना चाहिए?
0: जैसे मैम, जो बच्चे होते हैं तो लमसम 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अगर बच्चे 1 साल हो गया, 2.5 साल अगर बच्चे हो गए, अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही, इनको अलर्ट हो जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो चलते चलते हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो हमारे घर के नौनिहाल जो हैं वो स्वस्थ रहें, उनमें अगर स्पीच थेरेपी की जरूरत है तो वो उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास अवश्य ले जाएं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैम, उनको सलाह यही देना चाहेंगे, यदि आपका बच्चा क्या कहते हैं 12 मंथ का हो गया या 2-2.5 साल का बच्चा होगा, यदि वो बोल नहीं पा रहा है तो मेन कारण 2 हो सकते हैं। यदि बच्चा मोबाइल को फोकस कर रहा है खेलने की बजाय, और दूसरा कारण हो सकता है मैम ऑटिज्म की प्रॉब्लम होगा, ADHD की प्रॉब्लम हो गई है। ऑटिज्म में होता क्या है, इसमें बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, और इसमें क्या ADHD मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बच्चे शुरू में केयर नहीं किया जाता है तो इसमें हाइपर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: यानी कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए दे, लेकिन बच्चों के साथ घर में अगर बुजुर्ग हैं, कोई भी अगर घर के जितने भी मेंबर हैं, वो बच्चों से ज्यादा बात करें तो ये समस्या का समाधान जल्दी निकल सकता है। आकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, हमने सुनी ये भेंट वार्ता जिसमें हमने जाना स्पीच थेरेपी की आवश्यकता और महत्व। भेंटकर्ता थी बबली हंसपाल और वार्ताकार आकाश। और आगे मैं बताना चाहूँगी, मौसम कोई भी हो, हम सभी खूबसूरत दिखना हर मौसम में पसंद करती हैं, और ऐसे में त्वचा को हम अपने मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हम मेकअप के प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। पर मेकअप के प्रोडक्ट्स के साथ

साथ हम लोग इस बात पे भी ध्यान करते हैं कि हमें फेस पैक कौन सा यूज़ करना चाहिए। फेस पैक हमारे चेहरे को एक निखार देता है, हमारे चेहरे की जो त्वचा है उसको मुलायम करता है, जो चेहरे की खोई हुई रंगत है उसे वापस देता है। और त्वचा को निखारना और त्वचा को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के संपर्क में आते हैं और बहुत सारे केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के संपर्क में आते हैं। ऐसे में अगर हम नेचुरल फ्रूट्स के फेस पैक का प्रयोग करें तो ये एक सुरक्षित विकल्प होगा। हमारी जो स्किन है यानी कि त्वचा की जो टाइप है वो सबकी अलग अलग होती है। किसी किसी की त्वचा बहुत ड्राई होती है, किसी किसी की बहुत ऑयली होती है, किसी किसी की पैची होती है, तो सबकी अलग अलग त्वचा होती है और अलग अलग त्वचा के लिए होते हैं अलग अलग फ्रूट फेस पैक। तो सबसे पहला जो फेस पैक है वो है हमारा वाटरमेलन यानी कि तरबूज का फेस पैक। तरबूज को अच्छे से मिक्सी में पीसने के बाद और उसका पल्प निकाल के उसे अपने चेहरे पर 2 से 3 मिनट के लिए लगा के सुखा लें, क्योंकि गर्मी में ही तरबूज मिलता है और गर्मी में चेहरा जल्दी से ड्राई हो जाता है। ऐसा करने से हमारी त्वचा की जो नमी है वो बनी रहती है और हमारी त्वचा में अगर पैच हैं तो वो जल्दी से सही हो जाते हैं। इसके साथ अगर हमारी त्वचा में अगर झुर्रियाँ आ गई हैं और हमारी त्वचा जो है बेजान हो गई है तो इसके लिए हम स्ट्रॉबेरी का फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी हमें स्ट्रॉबेरी को पीस के उसका जो लेप है उसको चेहरे पे लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ऑयली स्किन यानी कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा समस्या सभी के साथ होती है ऑयली यानी कि तेलीय त्वचा की। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे त्वचा में ऑयल कंट्रोल करने वाले रोम छिद्र होते हैं वो साफ नहीं हो पाते और उसमें जो त्वचा का तेल है वो भर जाता है, इससे हमारा चेहरा काफ़ी डल दिखने लगता है। ऐसे में हम पपीते का फेस पैक ज़रूर लगा सकते हैं। इसके लिए हमें पपीते को अच्छे से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद इसमें नींबू के कुछ रस डाल के चेहरे पर लगा लेना है। कुछ देर लगाने के बाद इसे ठंडे पानी से धोने पर हमारा चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा और चेहरे में जो जमा हुआ तेल है वो भी इसी पैक के साथ बाहर निकल आएगा। अगला है शुष्क त्वचा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी त्वचा गर्मी में भी शुष्क रहती है और ऐसे में हमारी जो त्वचा है उसकी नमी जो है वो कम हो जाती है। हमें ऐसे फेस पैक लगाने की ज़रूरत है जो हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज कर दे और ऐसे में सबसे खास और सबसे आसान तरीका है एक ऐसे फल को चुनना जो हमेशा मिल जाता है, वो है केला। पके हुए केले को अच्छे से ब्लेंड करके उसमें 1 चम्मच शहद डालकर अगर हम चेहरे पे लगाएंगे तो हमारे चेहरे का जो ग्लो है वो बरकरार हो जाएगा और चेहरा काफ़ी मुलायम हो जाएगा और चेहरे का जो खोया हुआ मॉइस्चराइज है जो मॉइस्चर है वो वापस आ जाएगा। और साथ ही साथ एक और जो टाइप होती है स्किन की त्वचा की वो है कॉम्बिनेशन स्किन। किसी किसी की त्वचा कभी कभी ऑयली हो जाती है तो कभी कभी ड्राई हो जाती है यानी कि शुष्क तो कभी कभी तेली है। ऐसे में हम मेथी और इसके साथ साथ कुछ ऐसे फल जो आसानी से हमें मिल जाते हैं जैसा कि ग्रेप्स, अंगूर जिसे हम कहते हैं, इन सबको पीस के अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे लगाने से हमारे जो चेहरे की रंगत है वो बरकरार रहेगी और साथ ही साथ हमारा जो चेहरे का जो कहते हैं ना कि तेलीय होना या फिर शुष्क होना दोनों की समस्या दूर हो जाएगी। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चीज़ हमारी त्वचा के लिए जो है वो हमारी त्वचा की रंगत। हमारी रंगत जो है धूप में निकलने से टैनिंग आ जाती है और हमारी रंगत जो है काफ़ी डल हो जाती है। ऐसे में चेहरे की जो त्वचा है उसे मुलायम रखना और साथ ही साथ रंगत को बरकरार रखने के लिए एक खास फेस पैक है जिसे हम गर्मियों में ज़रूर लगा सकते हैं। उस फेस पैक के लिए हमें चाहिए खीरा और खीरे के साथ साथ दही। दही जो कि हम लोग गर्मी में खाना भी पसंद करते हैं, दही में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी त्वचा में जितने भी ऐसे जीवाणु या ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो हमारे चेहरे में इन्फेक्शन कर सकती हैं उन सबको दूर करते हैं। दही के साथ खीरे को पीस के अच्छे से ब्लेंड करके चेहरे पर लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये चेहरे को हमारे ठंडक भी पहुंचाएगा और साथ ही साथ हमारी जो चेहरे की खोई हुई रंगत है उसे भी हमें वापस कर देगा। इसी के साथ अगर हम रेगुलर के लिए कुछ सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी त्वचा की जो रंगत है और बरकरार रहे तो हम इन्हीं फलों का टोनर भी बना सकते हैं। इन फलों का रस निकाल के
एक हफ्ते के लिए फ्रिज

0: में स्टोर कर सकते हैं। रात में सोते समय चेहरे पे लगा लें, सूखने के बाद धो लें और सुबह देखेंगे हमारा चेहरे की रंगत जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फेस पैक लगाना हमारे चेहरे को एक तरह से कहते हैं ना, नमी देने जैसा या खाद देने जैसा है। जैसे ज़मीन में खाद देने से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है, वैसे ही हमारे चेहरे की जो निखार है या रंगत है उसको बरकरार रखने के लिए हमें फेस पैक तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो बहनों, आज इतनी सारी बातें करते करते देखिए समय हो गया आप लोगों से दूर जाने का, और मिलेंगे फिर से आप लोगों से, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी सखी बीना को, नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सुनिए,
3: कहिए, कहिए,
2: सुनिए।
4: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

अभी मैं लाइन सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत 101.9 FM बैंड पर या आकाशवाणी का अविद्या केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।

0: सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
0: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, हमें जान रहा है,
1: ख्याल रखने वाला
0: जी।
1: है ना। विषय बता दे।
0: चलिए
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे, है ना?
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे है
1: सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: कचोटते रहता है
0: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूँ नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक गाँव है रोबरखेड़ा वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत

0: सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
1: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है, और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
0: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
1: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
0: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है।
1: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी, जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
0: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
1: योग्यता है
0: उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में, तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: को सुनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हाँ हाँ हाँ क्या कहने, बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा, कभी कभी ऐसा था ना हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: वैसे, बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से, तो पहला संदेश पढ़ते हैं। ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है,
0: हाँ,
1: है
0: ना? बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं।

0: सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आँख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आँख का तारा कहते हैं। और हर माँ की आँख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आँख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आँखों का तारा है।
1: और देखो होना भी चाहिए
0: जी।
1: और एक और संदेश आया है, आँखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आँखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है। उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
0: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद मिलती कितनी है, मिलती है ना
0: जी।

0: सुना ली। मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।

0: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
0: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी ने किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वही एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरे घर के मेरे दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा।
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है।
0: हो जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पड़ जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि

0: माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है, लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती, लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: है, तारा होते ना बच्चे
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था, अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था, मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे, वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था, और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है, और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था, हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, इंटर में 93% और 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है, एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, TV बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा, और 1 हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: तो गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: भाई देखो कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उन्होंने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा के बाद चलिए तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: है। आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी,

0: बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारूद का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच के हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
1: जी, जी।
0: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आए में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया, एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
0: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
1: कहां
0: है
1: से कहां ये बात, देखिए
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुए और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहां।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मुझे छोड़ना जाना, बराबर की लाइनें थी और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: करके वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराए और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादियों मां मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्य हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्य सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है? अच्छा। जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है
1: जी,
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा?
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियू छे संतूर गीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा
0: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
1: बहुत शुक्रिया
0: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते?
1: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी

0: उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है, तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने, वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी, और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी। अच्छा। वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे, तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो मैं, हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया, और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक। और यही नहीं, जहाँ भी मैं गई, मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के इन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था। और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि मैं सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुके हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ

0: सीरियल का अवार्ड दिया है और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: वाह, तो कैसा काम चल रहा है ये?
0: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसके लिए एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: हैं और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलात थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बैरूर जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे ये हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा अच्छी से मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को
1: कोशिश कर रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने, कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है, हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आर डी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाहूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा।

0: और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहां 6 महीने वहां रहती हूं। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी और अभी भी वो कहते हैं कि जहां तुम्हारी खुशी वहां मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुन्द्र है नीला पानी सफेद रेत पाम ट्रीज एक किस्म से स्वर्ग है, वो इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं जिक्र करूंगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था और वो LP का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए

0: जी, जिंदगी में पुरस्कारों का, प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व है
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार असलम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 consecutive years बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेलुलॉइड

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली,

जब मैंने कैलेंडर देखा ना तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज मैदान पर सिर्फ जीतने का दिन नहीं है, बल्कि दिल जीतने की बात करने का दिन है। जी हाँ, आज है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे। अब आप सोचेंगे आखिर ये फेयर प्ले क्या बला है? सिंपल शब्दों में कहें तो ईमानदारी। खेल चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल हो, लूडो हो या फिर जिंदगी का खेल हो, चीटिंग करके जीतने से लाख गुना बेहतर है ईमानदारी से हार जाना। क्योंकि जो मजा रूल्स को फॉलो करके खेलने में है ना, वो शॉर्टकट लेके ट्रॉफी उठाने में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फेयर प्ले डे की नींव पड़ी 7 सितंबर 1963 को, जब फ्रांस के स्टार टेनिस चैंपियन जीन बोरोत्रा ने पेरिस में स्पोर्ट्स जो बॉडीज थी इनकी मीटिंग में ये प्रस्ताव दिया कि ऐसा किया जाए और यहाँ पे स्थापना हुई इंटरनेशनल फेयर प्ले कमेटी की, यानी IFCP की। इसीलिए सबसे पहले जो संगठन था इसको अनऑफिशियली 7 सितंबर को ही मनाता था। वर्ल्ड फेयर प्ले डे को ग्लोबली पहचान दिलाने के लिए हंगरी देश ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा और 1 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने इसे पास किया और 19 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व निष्पक्ष खेल दिवस घोषित किया गया और 19 मई 2025 को दुनिया ने पहला आधिकारिक UN वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया। और दोस्तों, इसकी रेलेवेंस आज भी बहुत ज्यादा है और इसे देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, अभी IPL चल रहा है ना, अभी IPL का जो क्रेज है उसमें टीम्स सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं भिड़ रही है, बल्कि हर टीम फेयर प्ले अवार्ड्स की टेबल पर भी टॉप पर रहने के लिए जोर लगा रही है। क्योंकि खिलाड़ी भी जानते हैं कि चौके छक्के से सिर्फ मैच जीते जाते हैं, लेकिन खेल की भावना से करोड़ों फैंस के दिल जीते जाते हैं। वैसे दोस्तों, खेल की बात तो छोड़िए, बचपन में गली क्रिकेट याद है? जब कोई कहता था ना कि भाई ये मेरी पहली बॉल ट्रायल थी, अभी मैं आउट नहीं हुआ, बहुत मजा आता था ना उसमें। वहां से लेकर आज इंटरनेशनल स्टेडियम तक खेल का मजा तभी आता है जब खेल ईमानदारी से, निष्पक्षता से और फेयर तरीके से खेला जाए। तो चलिए, चलते चलते आपको ये भी बता देती हूँ कि मैदान पर चीटिंग करके ना आप सिर्फ एक मैच जीत सकते हैं, पर जब हम फेयर प्ले करते हैं, खेलते हैं ईमानदारी के साथ, तो आप पूरी दुनिया का दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, खेलिए, पूरे जोश के साथ खेलिए, अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। तो इन्हीं पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए सुन लेते हैं ये गीत। फिल्म हिचकी से आवाज है अरिजीत सिंह की, गीत है राजशेखर का और संगीत है जसलीन रॉयल का।

0: दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और चलते हैं सेगमेंट भारतीय इतिहास से में, जहां आज बात होगी नाना साहब पेशवा द्वितीय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। वार्ताकार है अभिषेक कुमार राजपाल।
1: भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक नाना साहब पेशवा द्वितीय के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास में उनका नाम उस वीर योद्धा के रूप में लिया जाता है जिसने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। 1857 का संग्राम केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मसम्मान, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा का महाअभियान था, और इस अभियान के प्रमुख सूत्रधारों में नाना साहब का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। मराठा साम्राज्य भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली अध्याय रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की, उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत में अपनी वीरता का परिचय दिया। मराठा शासन में पेशवा का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। पेशवा राज्य के प्रधानमंत्री और वास्तविक शासक के रूप में कार्य करते थे। बाजीराव प्रथम और बाद में बाजीराव द्वितीय मराठा शक्ति के प्रमुख शासकों में रहे। नाना साहेब द्वितीय महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रभावशाली मराठा शासक थे। स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब 1857 की क्रांति में अपने अभूतपूर्व योगदान की बदौलत विश्व विख्यात हैं। नाना साहब को नाना धुंधुपंत के नाम से भी जाना जाता है। महान मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बाद नाना साहेब का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजता है। नाना साहेब को एक महान स्वतंत्रता संचारक के रूप में याद किया जाता है। नाना साहेब को पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने नाना साहेब को गोद ले लिया और बिठूर का पेशवा नियुक्त किया। नाना साहेब का इतिहास हमारे लिए प्रेरणीय है। नाना साहेब के जीवन परिचय को पढ़कर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 19 मई सन 1824 को वेणुग्राम नामक गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार नाना साहब का जन्म हुआ था। नाना साहब के पिता का नाम माधव नारायण भट्ट था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोत्र भाई थे। इनकी माता का नाम गंगाबाई एवं नाना साहब की पुत्री का नाम बायाबाई था। इनके जन्म के समय भारत में अंग्रेजों ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ भारत के अधिकतर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना था, ताकि मनमाने तरीके से व्यापार किया जा सके। यह वह समय था जब पेशवा बाजीराव द्वितीय कानपुर बिठूर में रहने लगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ साथ माधव नारायण भट्ट और उनकी पत्नी गंगा भाई भी कानपुर चले गए, जहां पर उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब को जन्म दिया। नाना साहेब के पिता माधव नारायण भट्ट पेशवा के सानिध्य में काम करते थे। नाना साहेब के काम से पेशवा बहुत अधिक प्रभावित भी थे। जब पेशवा के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने नाना साहेब को गोद ले लिया। कानपुर में रहते हुए गंगा किनारे नाना साहेब ने युद्ध की बारीकियां सीखी, जिसमें घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तलवार चलाने की कला मुख्य थी। इस समय किसी को भी नहीं पता था कि नाना साहेब के रूप में एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में भारतीय इतिहास में देश प्रेम के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। पेशवा परिवार के साथ साथ पले बड़े नाना साहेब में बचपन से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। 1857 के सिपाही विद्रोह कराने में गुप्त रूप से भाग लेने वाले अजीम उल्लाह खान इनके वेतनभोगी कर्मचारी थे। अपने अदम्य साहस के लिए विश्वविख्यात नाना साहेब को जब यह पता चला कि 1 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने कानपुर छोड़ दिया, तब उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा

करते हुए पेशवा की उपाधि धारण की। नाना साहेब हमेशा क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व करते रहे। अधिकतर मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजी हुकूमत का अधिकार हो गया। ऐसे में पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों की तरफ से 80 लाख सालाना पेंशन मिलती थी, जिससे उनका खर्च चलता। यह राशि उन्हें रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती थी। जब 28 जनवरी 1851 में बाजीराव पेशवा द्वितीय की मृत्यु हो गई, तब अंग्रेजों ने नाना साहेब को उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इसके पीछे अंग्रेजों ने तर्क दिया कि नाना साहेब दत्तक पुत्र हैं, अतः उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। यह कहकर उन्होंने मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया। इस बात से नाना साहेब को गहरी ठेस लगी। सन 1853 में नाना साहेब ने अपने यहाँ वेतनभोगी कर्मचारी एवं अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, फ्रेंच और हिंदी भाषा के जानकार अजीम उल्लाह खान को पेंशन पुनः शुरू करवाने के लिए और इस संबंध में अंग्रेज अफसरों से बातचीत करने के लिए लंदन भेजा। नाना साहेब की दलील लेकर जब अजीम उल्लाह खान लंदन पहुंचे और अंग्रेजी अफसरों से बातचीत की, तो उन्होंने उनकी मांगे मानने से मना कर दिया। नाना साहेब के सचिव अजीम उल्लाह खान बेरंग लौट आए। अंग्रेजों के इस रवैये से नाना साहेब को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को चुना। इस घटना के बाद नाना साहब कभी नहीं रुके, लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी साथ दिया, ताकि अंग्रेजों को समूल भारत से उखाड़ फेंका जा सके। 1857 का संग्राम और नाना साहब। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का मन बनाए बैठे नाना साहब को जब यह बात पता लगी कि मेरठ छावनी के सिपाहियों ने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग लगा दी है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का रास्ता अपनाया। स्वतंत्रता सेनानी तात्या तोपे के साथ मिलकर नाना साहेब ने सन 1857 में स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। कानपुर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, जिनका नेतृत्व नाना साहब और तात्या तोपे मिलकर कर रहे थे। जब नाना साहब खुलकर राष्ट्र मुक्ति संघर्ष में कूद पड़े, तब एक बड़ा जनसमूह उनके साथ खड़ा हो गया और नाना साहब के नेतृत्व में ही अंग्रेजों को कानपुर छोड़कर जाना पड़ा। नाना साहब ने पुनः कानपुर को अपने कब्जे में लेते हुए स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया, जो आगामी कई महीनों तक लहराता रहा। अंग्रेजी हुकूमत भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने हैवलाक के नेतृत्व में एक विशाल सेना के साथ कानपुर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का जवाब स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बड़ी ही वीरता के साथ दिया गया। कई समय तक चले इस खूनी संघर्ष में अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने कानपुर को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। भारत में कई जगह ऐसे देशद्रोही लोग भी मौजूद थे जिन्होंने खुलेआम अंग्रेजों का साथ दिया। एक साथ संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति की लहर नहीं फैल सकी और कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने की वजह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। जब 1857 का संग्राम असफल हो गया, तब नाना साहब को अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर नेपाल में शरण लेनी पड़ी। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि नेपाल में नाना साहब को शरण नहीं दी गई। दरअसल हुआ यह कि सन 1857 में नाना साहब और अंग्रेज अधिकारियों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन जब कानपुर के कमांडिंग अधिकारी जनरल व्हीलर सैन्य शक्ति के साथ कानपुर आ रहे थे, तब नाना साहब ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनकी सेना को तहस नहस कर दिया। इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मौत के घाट उतार दिए गए। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया। अब ब्रिटिश हुकूमत पूर्ण रूप से नाना साहेब के खिलाफ हो चुकी थी। उन्हें किसी भी कीमत पर नाना साहेब को पकड़ना था और उन्हें सजा देनी थी। पूरे दमखम के साथ नाना साहेब के मुख्य ठिकाने बिठूर पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। इस हमले में नाना साहेब बच निकले और ऐसा कहा जाता है इसी हमले के बाद नाना साहेब भारत छोड़कर नेपाल चले गए थे। मराठा साम्राज्य के पेशवा होने के कारण अंग्रेज भली भांति जानते थे कि नाना साहेब के पास अपार धन संपदा होगी, लेकिन जब नाना साहेब कानपुर छोड़कर नेपाल चले गए, तो अंग्रेजों के पास यह सुनहरा मौका था कि उनके महल

0: परिस्थितियों में साहस न खोना, संगठन और नेतृत्व की क्षमता विकसित करना देश केवल सैनिकों से नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से भी मजबूत बनता है। नाना साहेब पेशवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और देशभक्ति से इतिहास में अमिट स्थान बनाया। 1857 का संग्राम भले ही तत्काल सफल न हुआ हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की ऐसी लौ जलाई जो 1947 में भारत की आजादी के रूप में प्रज्वलित हुई। आज हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे महान सेनानियों के बलिदान को याद रखें और उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। इसीलिए कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: तो दोस्तों, भारतीय इतिहास सेगमेंट में अभी हमने सुना नाना साहब पेशवा द्वितीय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर हमने बातें की और वार्ताकार थे अभिषेक कुमार राजपाल। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट चक्रव्यूह में, जहां हमारे होते हैं सवाल और आप देते हैं जवाब। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं चक्रव्यूह क्रमांक 604 के प्रश्न और उनके उत्तर जो हमने आपसे पूछे थे। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे था, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था, जिसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। हमारा दूसरा प्रश्न आपसे था, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है, जिसका सही उत्तर है बैरन आइलैंड्स। हमारा तीसरा प्रश्न आपसे था, भारत में शून्यकाल यानी जीरो आर संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, जिसका सही उत्तर है 1962 में। हमारा चौथा प्रश्न आपसे था, अप्रैल 2026 में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, जिसका सही उत्तर है अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी। हमारा पांचवा प्रश्न आपसे था, भारत और मलेशिया के बीच दिसंबर 2025 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम था, जिसका सही उत्तर है हरिमो शक्ति एक्सरसाइज 2025। हमारा छठा प्रश्न आपसे था, नमो भारत डिपो गाजियाबाद में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस संगठन ने शुरू किया है, जिसका सही उत्तर है NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हमारा सातवां प्रश्न आपसे था, जून जुलाई 2026 में ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, जिसका सही उत्तर है इंग्लैंड और वेल्स। चलिए अब आपको बता देते हैं हमारे ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने हमारे इस चक्रव्यूह को भेज लिया और हमारे पास सही सही आंसर्स भेज दिए। और ये हमारे दोस्त हैं दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। अगले दोस्त हैं भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू। अगले दोस्त दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। अगले दोस्त हमारे बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से है प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। अगले दोस्त हमारे जिन्होंने हमारे चक्रव्यूह को भेज लिया वो हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। अगले दोस्त हमारे अड़ार नाथ घाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश दीपेश वर्मा।

और हमारे दोस्त जिन्होंने हमारे इस चक्रव्यूह को भेदा वो इतने ही थे। अब हम आपको बता देते हैं कौन से दोस्त हैं हमारे जिन्होंने हमें मेल किया और हमारे चक्रव्यूह को अटेम्प्ट किया। देखिए दोस्तों, आपके आंसर सही हो या नहीं हो, आप हमारे चक्रव्यूह को भेद पाए या ना भेद पाए, ये मैटर नहीं करता, पर आपने कोशिश की ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे चक्रव्यूह को अटेम्प्ट किया, वो थे ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगले दोस्त छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। अगले दोस्त परसाटोला अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारिणी कुमेंद्र मसिया। अगले दोस्त हमारे रिंगिनी छत्तीसगढ़ से थे दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अगले दोस्त सहसपुर लोहारा दनिया से हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी हेम प्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत। कवर्धा छत्तीसगढ़ से संतोष हेम प्रभा है। अगले दोस्त हमारे पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सोमांशु पांडे। अगले दोस्त हमारे डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और अल कबीर। अगले दोस्त हमारे हैं धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और क्रिस्टी पटवा। छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीणा, अश्विनी और विपुल कामड़े का भी आया जवाब। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश का भी आया हमारे पास ईमेल। पीपरलोड सरगांव से अगले दोस्त भी थे हमारे। उसके बाद पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। साथ ही गुड़ाराज से मनोज साहू, चित्रेखा साहू, देवेंद्र साहू, लीना और चंचल वासनी और गरिमा भी थे जिन्होंने हमें अपने जवाब भेजे। तो दोस्तों अब पेन पेपर लेकर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं चक्रव्यूह क्रमांक 605 के प्रश्न। इन्हें नोट कर लीजिए और हमें हमारे मेल आईडी पे भेज दीजिएगा yuvaniayodhya@gmail.com पर। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से नोट कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? प्रश्न दोबारा से सुनिए, आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न दोबारा से सुनिए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारा तीसरा प्रश्न है, आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन किसके लिए प्रसारण करता है? प्रश्न दोबारा से सुनिए, आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन किसके लिए प्रसारण करता है? हमारा चौथा प्रश्न है, आकाशवाणी का पहला समाचार बुलेटिन किस भाषा में प्रसारित हुआ था? प्रश्न फिर से सुनिए, आकाशवाणी का पहला समाचार बुलेटिन किस भाषा में प्रसारित हुआ था? हमारा पांचवा प्रश्न है, आकाशवाणी का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रश्न फिर से सुनिए, आकाशवाणी का प्रारंभिक नाम क्या था? हमारा छठा प्रश्न है, आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रसारण करती है? प्रश्न फिर से सुनिए, आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रसारण करती है? हमारा सातवां और आज का आखिरी प्रश्न है, आकाशवाणी का मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR किस वर्ष लॉन्च किया गया? प्रश्न फिर से सुनिए, आकाशवाणी का मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये थे हमारे चक्रव्यूह क्रमांक 605 के प्रश्न, और उम्मीद हम ऐसा करते हैं कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, अच्छे से सुन लिया होगा और 25 मई 2026 से पहले हमें इसके उत्तर जरूर लिख के भेज दीजिएगा। हमारा मेल आईडी है yuvaniayodhya@gmail.com पर। और ये जो हमारा चक्रव्यूह क्रमांक 605 था, इसके उत्तर साथ ही अगला चक्रव्यूह जो हमारा 606 होगा, इसका प्रसारण होगा 26 मई 2026 को। तो इसी के साथ चलिए सुन लेते हैं गीत। हमने लिया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज है विशाल मिश्रा की, गीत है नीलेश मिश्रा का और संगीत है प्रीतम का।

0: दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर आपको बता दें कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, हीट वेव्स चल रही है जो कि खतरनाक है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। पहला काम करना है खुद को हाइड्रेट करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, अगर प्यास ना भी लगी हो तो नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी पीते रहना है, ये इस मौसम में आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। और दोस्तों दोपहर में 12 से 3 के बीच बिल्कुल ना निकले, अगर जरूरी है निकलना ही पड़ रहा है तो छाता, टोपी या दुपट्टा साथ में जरूर ले, ढीले ढाले कपड़े पहने, साथ ही ज्यादा तला भुना और मसालेदार बिल्कुल ना खाएं। इस टाइम पे बाहर का खाना ना अवॉइड करना चाहिए, साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को थोड़ा सा लू से बचाए रखें क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो इनका जरूर ख्याल रखें। दोस्तों वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, इसी के साथ बता देते हैं कल के कार्यक्रम, कल चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस की, व्यक्ति विशेष में है सुमित्रा नंदन पंत और फिर होगा खेल संसार। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त मंजल सिंह को इजाजत, नमस्कार।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 MHz पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम का आरंभ अनीता श्रीवास्तव और सखियों के स्वर में इस लोकगीत के साथ।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: अरविंद मौर्य और साथियों को सुनिए इस लोकगीत में।
3: अवधि नगरिया में बाजली बध

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दिग्विजयनाथ सिंह और साथियों के स्वर में सुनिए ये खेमटा।
2: मकैया हो

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: डोलिया के लाले रंग वो हरावा।
2: हैदर अली जुगनू और साथियों को सुनिए इस लोकगीत में।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टर आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री छिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
5: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
3: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग

0: and CPIM candidate Sambhunath Kurmi. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In a social media post, Mr. Singh said the visit is aimed at further strengthening India-Republic of Korea defence cooperation and strategic partnership. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a post on social media post, cited an aide to Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. In cricket, the Indian squads for the Test and ODI series against Afghanistan were announced today with several notable changes across both formats. Wicketkeeper batter Rishabh Pant has been removed as vice-captain of the Test side and also dropped from the ODI squad. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the Test team to be led by Shubman Gill. And that is the end of this news bulletin.
1: कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार दीक्षा यादव पुत्री राणा प्रताप यादव उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी शीला कपूरवा थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश दिनांक 26 मार्च 2026 से कहीं लापता है। इनका रंग गोरा गोल चेहरा और इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया निकट की पुलिस चौकी पुलिस थाना या कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
1: शाम सुहानी कार्यक्रम में पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वो कौन थी से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत राजा मेहदी अली खां का है और संगीत मदन मोहन का।

0: चलो।
1: महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म का ये गाना। साहिर लुधियानवी के बोल थे और संगीत रवि का था। इसी गीत के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी से अब दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्याम सुहानी, हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमति प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। 2022 वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां मध्ये क्षेत्रीय सहकारं सुदृढीकरणम् अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यमस्ति। तन्त्रज्ञानं, नवान्वेषणं च, सुस्थिरता, पुनर्नवीकरणीयोर्जा, डिजिटलीकरणं च अस्य सम्मेलनस्य प्रमुखानि क्षेत्राणि सन्ति। व्यापार आर्थिक सहभागित्व सन्धिना TEPA इत्यनेन सह अधुना प्रवृत्तेन शिखर सम्मेलनस्य भारत नॉर्डिक क्षेत्राणां मध्ये व्यापार निवेश संबंधाः अपि सुदृढाः भविष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। नॉर्डिक समूहेन सह भारतस्य द्वैपाक्षिक व्यापारः सम्प्रति प्रायः 21 बिलियन डॉलर मितम् अस्ति। अनेन शिखर सम्मेलनेन भारत नॉर्डिक देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सहकारस्य विस्तारः भविष्यति तथा च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चायाः अवसरः प्राप्यते इत्यपि अपेक्षा अस्ति। शिखर सम्मेलनात् प्राक् पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी आइसलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा, फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा, डेनमार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा च सह द्वैपाक्षिक मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन देशानां भ्रमणं समाप्य ह्यः नॉर्वे देशं सम्प्राप्तवान्। गतसायं सः क्राउन प्रिंस हकोन तथा नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोन इत्युभाभ्यां सह भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान

0: संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् संतोलयति। यूक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं सार्ध सप्तवादने जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायाम् प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अंते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्स इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: एफएमएंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे स्वर्गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: कार्यक्रम में पहला गीत आप तक पहुंच रहा है श्रीकांत मिश्रा और साथियों के स्वर में।

0: सन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
2: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंके, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
3: अरे लिख करी रुदानवा पति के परवनवा लिहले आया ना हो लिहले आया ना।
4: ये गीत तक पहुंच रहा है शिव चंद्र पांडे की स्वर में।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर। हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: हाँ भैया
5: भाई देखो अपने सब पंचायती में आएगा वागे।
4: बिल्कुल भैया कहे रहे ना वादा के मुताबिक देखो 6:45 हो गया किसान वाड़ी का कार्यक्रम लेके हमारे सब हाजिर रही है पंचन के समक्ष।
5: बिल्कुल तो पंचन का एकदम और बता दीजिए ना कि आज पंचे का सुनी है।
4: हाँ हाँ बता दी। देखो चर्चा हमारे सबके बीच में रहे मेंथा के खेती के बारे में और जो भेंटवार्ता सुनवा जाए ना गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन बताइए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य और इनसे बातचीत करिए पूनम वर्मा।
5: बिल्कुल भैया गीत गाओ नहीं बाजार भाव मौसम का सुनबे करिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल
5: लेकिन गोवर्धन भैया देखो ना आजकल जो है अपने पंचे अपने खेती बाड़ी में तमाम मेयर के साग सब्जी लगाए है
4: ये भैया ना ये जायद का खेती है। जायद माने ढेर का और ढेर का मतलब नगदी हो तो जान लो ढेर समझा जाए।
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: ज्यादा तो है तो जायद है तो ये हमें ज्यादा मतलब नगदी और नगदी मगर पंचे भैया मेंथा खेती किए हैं साग सब्जी के खेती किए हैं उर्द मूंग लगाए हैं जो नहरी लगाए हैं तो वही में तो उनके नगदी कमाई हो।
5: बिल्कुल भैया लेकिन देखो जोन पंचे अपने मेंथा के खेती करे चाहत हुए या करे हुए करे है तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखे। अब की तो पंचे देखो तैयारी में है एकदम बिल्कुल उनके फसल ये समय पहुंच गया है ना तो आगे जे नवा खेती करे चाहे वो ध्यान रखे कि मेंथा खेती यस खेत में करे यानी पिपरमिंट अपने यहाँ कहा जाता ना पिपरमिंट की खेती यस खेत में करे जहाँ अच्छी जो है जल निकासी की व्यवस्था हुए साथ ही साथ पानी के पर्याप्त व्यवस्था हुए।
4: सही बात कहा भैया ना। और भैया देखो ना एक तो कहावत है ना घर एक से एक जठानी का तो अपने गांव घर गांव में तो जे मेंथा खेती की है पिपरमेंट की खेती की है बाटे और जे करे चाहत बा उनके खेती देखे कि कौने टेम ये जो बेरन डाले कौने टेम लगाए कैसे निराई किए कैसे गुड़ाई किए कितना खाद पानी डाले और अब देखो ये पिपरमेंट की खेती जो लहलाहत बाटे एकदम खेती में अब देखियो ये भैया ना खेती में जगह नहीं दिखात पाटे एकदम छाप लिए बाय है और जब छाप लिए बाय अब स्थिति बाटे कि भाई 75 दिन 80 दिन 70 दिन को हो जाए और तब हमें सब जो है ओके मशीन में ले जाया जाए कहा जाए आसवन विधि से तेल निकाला जाए।
5: लेकिन यहू ये समय जैसे बताओ तो लहलात बाय तो वह काहे की सही समय पोकर जब बुआई हुए तो है ना
4: बिल्कुल बिल्कुल
5: समय मान लो पिछड़ी गए तो आगे बरसात आइए अपन खड़ी फसल खराब हुई
4: ये भैया तेलो कम निकलत है।
5: बिल्कुल
4: ये हमें जितना धूपिया लागत है ना उतना खेत किनारे अगर खड़ा हो जाए ना तो पता लग जाता है पिपरमेंट के ठंडी आवत बा सोधाई आवत बाटे
5: महाकत
4: बाट सही बात है। तो यह तरह से हम सब देखे एक बात है भैया बहुत

0: प्रतिज्ञ इसे खेत जहाँ छाए ली है ना, वो हमें पंच भैया जो खेती किसानी करे जाते जिसे पानी लगाए जाते या कहूँ कहूँ खर पतवार जामा है तो कहा उखाड़े जाते है ना, तो वहां का किरौना रह डर रहा था
1: बिल्कुल
0: काश छाया रहा था घुसा रहा थे, तो तनकी बचाए के जूता उता पहन के या डंडा ले के मतलब अपने सावधानी पूर्वक वह खेते में
1: बिल्कुल भाई देखो आपन तो सुरक्षा जरूरी है ये है
0: बहुत जरूरी
1: खेते कामों जरूरी है तो ऐसा रास्ता निकाले कि आपन कामों हो जाए और जो है कोनो तरह के कोनो दुर्घटना भी ना हो पावे।
0: बिल्कुल सही बात ये भैया, हम तो कहते हैं जो लीलगा है जो और जानवर है ना एक खाते नहीं, लेकिन अगर खेते में हल जाते तो भाई पतैये का पेड़वा के में महत्व है और जब टूट जाए पेड़वा टूट जाए पतैया झर जाए तो वह नुकसान हो जाता है, तो खेते में हल न पावे खइए तो ना लेकिन हल न पावे, अगर खेते में हल नहीं है बाहरी जानवर चाहे गाय भैंस जो भी हो चाहे नील गाय हो तो नुकसान हो जाए।
1: बिल्कुल भैया कोशिश करे वह नहा ले पावे लेकिन अपना संजा सवेरे जरूर हल्के देखे कि कौनो जोन है कीड़ा मकोड़ा लागत हुए में है कौनो रोग व्याधि ना लागत हुए है ना, तमाम मेर के देखो रोग लागत है महा किया।
0: अरे भैया देवका लाग जाते है सूनी लाग जाते है और जो पत्तिया लपेट ना है, अब तो पहले तो ना लपेटत रहा पहले देखा जात रहा ना पहले ना लेकिन अब जो देखा जात बाट है वो पत्ती लपेटे वाला कीड़वा लग जाते अब पौध गलन हो जाते कहूँ कहूँ झुराए जाते पेड़ झुराए जाते ना।
1: बिल्कुल भाई अगर तो पानी ज्यादा लग जाए
0: पानी ज्यादा लग बहुत सही कहा, ये लिए पानी ज्यादा न लगे ओके व्यवस्था परिवार खेत रहे तो ऐसे में हमारे सब खेती किन जाए और तब तो बढ़िया अब देखो अच्छे भाव से बिक जाए।
1: बिल्कुल भैया और देखो अगर तनिको दिखाए पड़ा कुछ मान लो रोग है कोनो किया फतरिंगा भय तो का अपने विशेषज्ञ भैया से जो है सलाह लेके तुरंत मन कोनो लापरवाही ना करे भैया।
0: बहुत बढ़िया पूरन भैया बात किया के पूरा कह दिया कि अगर अपने मन से कोनो दवाई छिड़काव कह दिन गए और पतैया झर गए तो कुल मेहनत
1: बेकार हो जाए
0: डाँड हो जाए। तो पतई हमें सबके राखे एक बार पेड़ राखे एक बात है ये नाते जो कृषि विशेषज्ञ हैं भैया ना कृषि रक्षा इकाई से या किसी वैज्ञानिक हैं वहाँ राय मशवरा ले के तब दवाई छिड़का जाए तो अपन पौध बचा रहे हमें पतई बचा रहे जितने पतई जितने बड़ी पतई जितने बड़ा पौधा रहे उतने हमें सबका लाभ रहे।
1: बिल्कुल गोवर्धन भैया और यही मारा ना अपने जो आकाशवाणी अयोध्या है ना अपने सब अपने वैज्ञानिक भैया का विशेषज्ञ भैया का समय समय पर बुलावा करा जाता है और अलग अलग अपने किसान पंचन दाई खेती बाड़ी भय अपन पशु प्राणी भय सबके ताए कुछ बढ़िया बढ़िया जोन है जानकारी लेके आवा जाता
0: बहुत यही लिए भैया ना आकाशवाणी के जोड़ ना ही ना कि ओहो खेती किसानी कहीं आकाशवाणी तो राम भाण है
1: बिल्कुल
0: बहुत सही बात बहुत सही सलाह बहुत समय पे देते है ना ये लिए आकाशवाणी जो किसानवाणी कार्यक्रम है पंछी बहुत पसंद कर रहे थे बहुत सुनत है और यह समय भी सुनत हुई है।
1: बिल्कुल तो आज जोन है अपने पंचन ताई बढ़िया जोन बत कही लेके आवा हो वो का समय है का पंचन का सुनवा जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखो गर्मी का है तो गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन कैसे भोजन पानी उनका रखाव करे बात है एक बारे में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य भैया जो उनके प्राध्यापक हो पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आवर है और इनसे पूनम वर्मा बतियानी रहे।
1: बिल्कुल चलो अपने सब सुना जाए अपने पंचे भी सुने।
0: हाँ
2: पंचो जैसे वही आप सुनें आज हमारे बीच में है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य जी जो उनकी प्राध्यापक हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या और आज हमारे स्टूडियो में है हमारे जो आज के बातचीत के विषय है कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य जी अपने स्टूडियो में आपके स्वागत करी थे
3: धन्यवाद
2: और यही के साथ जिसन की हमारे विषय है भाई गर्मी के मौसम चलते बाटे हम लोग जो पशु पाले है पशु हमार बढ़िया उत्पादन दे कोनो तरह से गर्मी से प्रभावित ना हो पावे तो इनके आहार प्रबंधन के बारे में आपसे आज जानकारी ले चाहत है तो गर्मी के पशुओं पे का प्रभाव पड़ता है।
3: तो किसान भाई जैसा आप लोग देखते हैं खुद भी महसूस करते हैं कि गर्मी से हम लोगों को भी पसीना आता है हाँफने लगते हैं तो यही प्रभाव जो है मिला जुला के पशुओं पे भी पड़ता है क्योंकि पानी शरीर में लगभग 70% पानी होता है और अगर पानी की कमी हो जाएगी गर्मी में सीधी सीधी बात है पानी कम होता है तो सारा जो दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ता है वो पानी के कम होने के कारण ही पड़ता है। जो सबसे पहला दुष्प्रभाव होता है कि पसीना से पानी उड़ता है शरीर का तो खनिज तत्व भी उसके

0: साथ निकल जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो खनिज तत्व या इलेक्ट्रोलाइट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, उसकी कमी तुरंत होती है।
1: अच्छा,
0: और अगर ज्यादा कमी हो गई तो सीधे बेहोशी हो सकती है आदमी में, देखा जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर भैया, लोग जो डिहाइड्रेशन कहा थी, यही कहा थी इनका?
0: जी, डिहाइड्रेशन यही।
1: अच्छा,
0: कम मात्रा में पानी होता तो डिहाइड्रेशन हो गया, अगर पानी के साथ साथ जो है खनिज ज्यादा निकल गया तो शाक उसको अंग्रेजी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: शाक की स्थिति उत्पन्न होती है।
1: हाँ,
0: तो पानी और ये मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ तो इसी से मिला जुला प्रभाव होगा कि पहली चीज तो है खाना बंद कर देगा, पानी खाली पिएगा। दूसरा क्या होगा कि दूध कम हो जाएगा, दूध में भी पानी आता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर प्रजनन वाली पशु है कोई तो उनकी क्षमता पे असर
1: प्रभाव पड़े।
0: और जो खनिज की या नमक कह लीजिए किसानों की भाषा में, नमक निकलता है उसकी कमी भी होती है।
1: अच्छा,
0: तो अगर पानी के साथ साथ नमक भी देना बहुत जरूरी है, पहला चीज। खाली पानी पियेंगे पेट फूलेगा और नमक की कमी नहीं पूरी होगी, पानी तो आपका पूरा हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसमें भी बेहोशी होते आ जाती है। हम लोग भी, जैसे आप देखे होंगे किसान भाई की पानी पीते हैं प्यास नहीं बुझती है।
1: हाँ, सही बात है।
0: उसमें नमक न मिलाए या फिर वायरस न मिलाए तब तक जो है प्यास बुझती नहीं। क्यों प्यास इसलिए नहीं बुझती क्योंकि नमक भी कम हो गया।
1: अच्छा,
0: तो गर्मी में किसान भाई पानी और नमक दो की कमी से बचाए, जो मुख्य मुद्दा यही है।
1: कितना पानी पशुन का दिन भर में पियावा जाए?
0: एक जानवर लगभग 60 से 80 लीटर पानी जो है दिन भर में चाहिए होता, बड़ा जानवर है तो।
1: अच्छा,
0: और पानी पीने के साथ साथ जो है उसका समय भी ध्यान रखें।
1: अच्छा,
0: अचानक दोपहर हम दे दें आप क्या रात गर्मी से तुरंत दे दिए।
1: अच्छा,
0: कोशिश करें कि ताजा पानी दें, ठंडा पानी दें, ठंडा मतलब कि
1: नल से निकाल के,
0: फ्रिज वाला नहीं, नल वाला पानी, ताजा पानी। और कम से कम 3 बार तो जरूर ही दें दिन भर में।
1: अच्छा, और जो कहा थी नमक कमी हो जाए तो पानी में नमक भी मिला दें?
0: पानी में नमक ना मिलावें, वो दाना और आहार में आए।
1: अच्छा अच्छा, नहीं तो वही हम जाने चाहें कि जैसे हमारे सब चीनी नमक पानी के घोल पी ले जाते
0: हैं। सकते हैं, लेकिन आहार में इसीलिए नमक की मात्रा जरूर शामिल करें।
1: अच्छा, और जैसे गर्मी के प्रभाव के बात की जाए तो हमें पशुअन के जैसे जहर रहा थी पशुबाड़ा के उचित प्रबंधन के तहत कैसे कैसे का
0: आहार में देखिए, ये गर्मी का सीजन है तो हरा चारा की थोड़ी सी कमी हो जाती है। अगर हरा चारा दे पाते हैं किसान भाई तो बहुत बढ़िया है, तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। लेकिन हरा चारा के साथ साथ लगभग 2 से 3 किलो भूसा या सूखा चारा की भी जरूरत पड़ती है एक जानवर पे।
1: अच्छा,
0: लेकिन जो भूसा भी देते हैं किसान भाई इस मौसम में, उसका ध्यान रखें कि थोड़ा सा ठंडा करके दें, पानी डाल के दें।
1: अच्छा,
0: और दाना दाना भी जरूरी है, जैसा मैंने कहा नमक की कमी होती, दाने में ही नमक मिला के दें, पूरा दें।
1: अच्छा,
0: लगभग 40 से 50 ग्राम जो है नमक
1: प्रतिदिन,
0: हाँ प्रतिदिन जो है इस समय जरूर दें।
1: अच्छा,
0: और कोशिश करें कि खाना जो या दाना दे रहे हैं या आहार जो दे रहे हैं चारा, ये सवेरे संध्या 2 मीटिंग दें।
1: अच्छा,
0: ठंडे ठंडे। और रहने के लिए जो व्यवस्था करते हैं छाए में, कोशिश करें छिड़काव करें उस पे, हवा की प्रॉपर व्यवस्था हो। ठीक, ये चीज है। और जो भैंसे हैं उनको कोशिश करें कि दिन भर में एक बार नहलाने की व्यवस्था जरूर करें किसान भाई, या अगर तालाब की व्यवस्था कर सकते हैं। बिना नहाए भैंस का दूध कितना भी आप खिलाई पूरा नहीं होता, कम हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब कि एक बार जरूर नहलावा जाए,
0: नहलावा या फिर भैंसों के लिए तालाब की व्यवस्था,
1: तालाब में
0: खोद के 2 बाल्टी पानी डाल दे, वहीं कीचड़ जैसा हो जाए तो भी भैंस पसंद करती है।
1: हाँ, अच्छा, कीचड़ में लोटा बुनना है पसंद आवत है,
0: वो जरूरी चीज है भैंस की।
1: अच्छा,
0: ये हम लोगों को लगता है गंदगी कर रहे हैं,
1: गंदगी कराते हैं, सही बात है।
0: दूध की क्षमता उनकी बनी रहती उससे।
1: अच्छा,
0: वही भैंस आप लोटना उसका बंद कर दीजिए तो दूध उसका कम हो जाएगा।
1: सही कहा थी ना, बरसात बरसात में अक्सर के देखे मिले थे ना, और हम लोग देखे थे कि दुआरे पे खूटा बाने हैं नौचारी और कीचड़ बा, और मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से बैठी हैं, तो बल्कि हम लोग सोचबो कही थे कि देखा गोरू तो पाल लिए हैं लेकिन इनके सही व्यवस्था ना के पाए, इनके रहा के इनके उकरे का और गंदगी में पड़ा है।
0: क्योंकि भैंस की जो पैदाइश है वो अपने यहाँ की है।
1: हाँ,
0: गर्म जगहों पे ही होती है, 2 तरीके की होती है, एक शुद्ध साफ पानी में पाल जाती है, वो साफ पानी में कूदेंगी नदी में।
1: हाँ,
0: और दूसरी कीचड़ वाली होती है।
1: हाँ,
0: तो उनका स्वभाव ही है, अगर वो नहीं
1: ताले में अगर कमो पानी बांटे तो वो इनका आनंद आ जाए। और गाय अगर पाले हैं तो गाय का
0: गाय भाई नहला सकते हैं, गाय को कीचड़ और इसकी जरूरत नहीं
1: नहीं है। तो ये तो आप बताएं कि अच्छे से आहार दिन जाए, पानी उनका पर्याप्त पियावा जाए, और जहां अपन गोरु बछरू बांधा जाए वहां तरी तरावट के थोड़ा व्यवस्था रहा है कि गर्माहट ना रहा, उनके ठंडी जगह पे उनका रखा जाए, मड़ई है या कहां उनका जैसे छपरा परम नहीं रखा था तो यार बाहर से लू ना।

0: गए पावे, गरम हवा ना लागे पावे, वह हम बोरा वोरा बांध दिए और उसका पानी छिड़काव के दिए। तो यह तरह से अगर हम सभी ध्यान रखी थे तो उनके पशुओं से जो उत्पादन मिला थे दूध के, उसपे ज्यादा फर्क ना पड़े। यह समय गर्मी के मौसम में ऐसे हमारे पशु प्रभावित न हो पावे, कोनो कोनो तरह से रोग का सामना तो न करे पड़े।
1: कि सरकार कुछ टीके भी लगवा रही है इस समय, ये सीजन है गर्मी का, टीके व्यवस्था रहती, साल में दो बार लगता है, तो जो टीके लग रहे हैं वो जरूर लगवाएं।
0: अच्छा,
1: जैसे खुरपका मुहपका हो गया, मतलब एफएमडी जिसको कहते हैं, उसके टीके लगते हैं और कुछ बीमारियों के टीके सरकार की तरफ से पशु चिकित्सक लगाते हैं।
0: किसानन के कैसे पता चले कि टीका?
1: पशु चिकित्सक जो है टहल टहल के वहाँ पे लोग जाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय से वेटनरी हॉस्पिटल से संपर्क कर लें।
0: अच्छा,
1: और कीड़े की दवा हर 6 महीने पे हम हर बार किसानों को बताते हैं कि देते रहें, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है अभी, इसके बाद पहले से तैयारी हो।
0: अभी मई चलते बाटे और जून के आखिरी से जान लें कि बारिश के समय आई जाते
1: आ गया है।
0: हाँ।
1: और इस समय थोड़ा सा मक्खी की भी समस्या आती है अभी, तो उससे भी थोड़ा बचाव रखें। मक्खियां भी ठंडा जहाँ ज्यादा कर देते तो मक्खी भरमन करती है, कोई बीमारी के घर होती है।
0: अच्छा,
1: बहुत सारी बीमारियां जानवरों में मक्खियों से आता है, मक्खी से और किलनी से आता है।
0: अच्छा,
1: तो उसकी भी ध्यान दिए रहें कि वो न लगे।
0: तो इसे कैसे मक्खी से बचाव हो पाया?
1: भाई मक्खी से बचाव हो धुंधर कर सकते, दिन में लगती हैं तो बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक ना लगे।
0: अच्छा,
1: किलनी तो बिल्कुल ना लगे, ठीक है, वो साफ सफाई रहेगा तो ठंडा किनाते रह रही तो चल जाएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद गर्मी में गर्म मौसम हो रहा तब भी लगी हुई है, दिन भर लगी हुई तो गड़बड़ है।
0: अच्छा,
1: और गाभिन पशु हैं अगर तो उनको दाने की पर्याप्त व्यवस्था करें, खनिज मिश्रण साथ में दें।
0: अच्छा,
1: वो भी हम कहते आए हैं अंतिम महीने में लगभग 2 किलो दाना एक्स्ट्रा दें, जितना नॉर्मल होता है 2 किलो दाना दो खुराकी में ज्यादा बढ़ा के दें।
0: अच्छा,
1: दूध देने वाले जो जानवर हैं, हरा चारा पूरा मिल रहा है, पेट भर मिल रहा है, तो 5 किलो दूध तक उनको अलग से दाना देने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: और उससे ऊपर अगर है तो 8 किलो दूध से ऊपर हो रहा है तो लगभग 2 से 2.5 लीटर दूध देने पे 1 किलो दाना एक्स्ट्रा दे दें। अगर गाय है 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो, भैंस है तो 2 लीटर दूध दे रहा, तो 1 किलो
0: दाना,
1: इसलिए 1 किलो दाना एक्स्ट्रा होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: प्रतिदिन प्रति जानवर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और दूध में पानी आता है तो उनके पानी पीने की पूरी व्यवस्था रखें। नमक का कंट्रोल रखें, मतलब नमक जरूर रहे, मिला के दे, खाली पानी देंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। हम ये भी बताते आए हैं किसान भाइयों को, जैसे इस मौसम में हरा चारा नहीं मिल रहा है तो पुराना जो चना मटर अगर कटा हुआ है हरा सुखा के रखे हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: पशुओं के खाने में। और जो किसान भाई मुर्गी पालते हैं,
0: अच्छा,
1: तो मुर्गियों की जो बिछावन होती है उसका भी दाना के रूप में थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: लगभग जो है 1/4 दाने का 1/4, मतलब 20 से 25% हिस्सा जो बिछावन है मुर्गियों की उसको भी दाने में शामिल कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो हमारी यही सुझाव है। और अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो निकटतम जो है पशु चिकित्सालय में या फिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क करें।
0: अच्छा अच्छा, फिर भी हम पूछना चाहते हैं कि जैसे कुछ अपने किसान पंचायत की शादी ब्याह है और ढेर के खाना बच गया हो तो गुरुए के अपने खिया देते हैं।
1: नहीं, तो सड़ा खाना ना रहे भाई, अगर दुर्गंध आ रहा है तो बिल्कुल ना दें। तो बिल्कुल नहीं, तो मना ही है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या कहा चाहते हैं विशेष सावधानी के तौर पे अपने पशुपालक भैया लोगों से?
1: साफ सफाई रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर रहे इस मौसम में, छाए की व्यवस्था रखें, पानी का छिड़काव करें और खाना ठंडे ठंडे दें, सुबह शाम दें। पानी और नमक इस मौसम में जरूर मेंटेन रखें, नमक जरूर दें लगभग 20 से 50 ग्राम के बीच में और पानी पूरा रखें।
0: तो यह तरह से अगर खास खास बातन पे हमारे पशुपालक भैया लोग ध्यान देते हैं तो उनके पशु स्वस्थ रही हैं और जो ने भाई दूध देते हैं तो दूध बढ़िया दी है, जो ने उद्देश्य से पशुपालन करे हैं उन्हें पूरी सफलता मिली है। तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य भैया, आप प्राध्यापक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हमारे स्टूडियो में आए। गर्मी में पशुओं का आहार प्रबंधन और उनका रख रखाव विषय पे इतनी बढ़िया जानकारी दी किसान पंचों की ओर से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गोवर्धन भैया।
3: हाँ पूरन भैया।
2: भाई देखो कितना बढ़िया जोन है ये जोन, अपने पंचन ताई बत कही रही कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन विशेषज्ञ रहे अपने डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य भैया, जो उनकी प्राध्यापक हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से।
3: बिल्कुल बिल्कुल रहे, और बहुत बढ़िया बात बताए। और पंचन का जो है

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: पूरन भैया।
6: हाँ भैया।
5: देखा भैया, अब तो बारी है ना लोकगीत के, तो पंचन की बताओ कि कौन लोकगीत सुनवावत हो, है ना?
6: बिल्कुल।
5: कैसे लागे हुए तो पंचे बताइए।
6: हाँ भाई, देखो ऐसा इतना गर्मी खूब लाग रहा है, बगिया में चला जाओ तो बड़ा ठंडा ठंडा लागत नीक लागत है।
5: टिकोरे लौकत है भैया।
6: हाँ लेकिन भैया बगीवा कब सोत ना, ये अपने शारदा सिन्हा और उनके साथी की आवाज में एक सुना जाए।
5: शारदा सिन्हा पहचानत है, जानत है, और सुने इनका गीत बहुत पुराना है।

0: गोवर्धन भैया।
1: हाँ पूरन भैया।
0: देखो भैया कितना बढ़िया है कि कोयल भी ना बगिया ना सोहरा जा।
1: भैया है ना, हम तो कही था ना कि पंचन का दिल खुश कह के पूरा पूरा कह दिया है ना मनमनसान।
0: लेकिन भाई दिल और खुश हो ही जाता है तब जब ये लगा था कि अपने खेते में इतना मेहनत की है और जो सौदा तैयार भाव का मंडी में बेचा जाए तब बढ़िया दाम मिल जाए तब कितना खुशी हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पंच भैया इंतजार कर रहे थे कि जो है बाजार भाव बताइए कब और मौसम की जानकारी बताइए। तो हम तो सोचे थे बाजार भाव पंचे टकटकी लगाए हैं और अब मौसम बतावत चला जाए तो बाजार भाव बता का विचार बात है।
0: बिल्कुल भैया, देखो जोन मौसम का हाल मिला है सबका, ओमन जोन है अधिकतम तापमान जोन रहा 41 डिग्री सेल्सियस जोन की सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जोन की सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
1: आर्द्रता जोन है ना 81% अधिकतम रही, न्यूनतम 40% रही। हवा गति 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही। हवा की दिशा जोन है दक्षिणी और पूर्वी रही।
0: बिल्कुल भैया, और आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा है और हवा सामान्य गति से जोन है पछुआ चलने की संभावना भैया। अच्छा। और तापमान जोन है सामान्य से अधिक रहा यानी कि लू चलने की संभावना है।
1: जब पछुआ कहा है भैया ना और तब पंचे से समझ गया कि अब लू बेरिया है बतावत है लोग। अच्छा ठीक पंचे भैया देखबा करी। अब बाजार भाव की तरफ चली थे तो चावल का मन 3050 रुपया प्रति क्विंटल और गेहूं जो है 2585 रुपया, मक्का पीले 2385 रुपया, उड़द काली 9250 रुपया और चना देसी 6400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा।
0: साथ ही साथ मसूर रहा 7050 रुपया प्रति क्विंटल, अरहरी दाल रही 10950 रुपया, आलू उजर की 720 रुपया और प्याज लाल 1200 रुपया प्रति क्विंटल,
1: टमाटर 2220 रुपया, लहसुन 6920 रुपया और तरोई 2100 रुपया, खीरा 1500 रुपया, भांटा 2200 रुपया, हरियर की मिर्च 3600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब।
0: कद्दू रहा 1340 रुपया, अदरक रहा 5900 रुपया, शिमला मिर्च 3000 रुपया, भिंडी 1850 रुपया,
1: लौकी 1570 रुपया, करेला 1490 रुपया और फल की बारी चली थे तो केला पक्का 2685 रुपया और निबुआ 8200 रुपया।
0: साथ ही साथ पपीता रहा 2650 रुपया, सेब रहा 11300 रुपया प्रति क्विंटल, अनार रहा 8200, गुड़बट्टी रहा 5070 रुपया और चीनी रहा 4130 रुपया प्रति क्विंटल।
1: बिल्कुल भैया ये तो बाजार भाव रहा। अब आगे जो काल जो पंचे सुनिए कार्यक्रम रहे किसी जगत।
0: बिल्कुल।
1: और किसी जगत में भैया चर्चा रहे विश्व मधुमक्खी पालन दिवस पे ये चर्चा सुनिए और काल दुई भेंट वार्ता रहे। हाँ, एक त्रय प्रगतिशील कृषक मधुमक्खी पालक से और जो दया शंकर है ना इन्हें से बातचीत, इनसे पूनम वर्मा बातचीत करी
0: और दूसरा का जो रे भैया खरीफ उत्पादकता गोष्ठी पर आधारित रेडियो रिपोर्ट है ना
1: आलोक कुमार गुप्ता।
0: हाँ,
1: और प्रस्तुति रहे श्री संजय धर द्विवेदी का और ये तो काल सुना जाए और पंचन से फिर हम सब मिला जाए नीक बात बत कही गीत गौने के साथ। तब तक समय देखो इशारा करत बाटा है तो गोवर्धन भैया का
0: और पूरन का दिया अनुमति। जय

0: किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। किसानवाणी कार्यक्रम में प्रस्तुति रही कंपेयर्स की रामप्रीत निषाद उर्फ गोवर्धन और दिलीप कुमार मौर्य उर्फ पूरन की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन, महफिल गजल कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 9:15 से। हेलो अयोध्या सुनिएगा रात्रि 9:30 से। हमारे कल के कार्यक्रमों में कार्यक्रम विवरण होगा प्रातः 7:15 से। अमृत कलश सुनिएगा प्रातः 7:30 से। सुर संगम आप सुनेंगे प्रातः 8:15 से। प्रणाम अयोध्या सुनिएगा प्रातः 8:30 से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा विश्व मधुमक्खी दिवस। इसके अलावा प्राध्यापक डॉक्टर विंध्यमणि त्रिपाठी की वार्ता सुनिएगा, विषय होगा सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और साहित्यिक अवदान। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम होगा प्रातः 9:00 से। हेलो अयोध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा प्रातः 10:00 से। लोकरम कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30 से। फेसबुक श्रोताओं के साथ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा होगा दिन में 1:00 से। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:00 से। अंगना कार्यक्रम का समय होगा दिन में 2:30। कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस और सुमित्रा नंदन पंत जयंती पर। इसके अलावा फरमाइशी लोक संगीत कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे लोक सुरमाला के अंतर्गत। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:00 से। कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। व्यक्ति विशेष में बात होगी सुमित्रा नंदन पंत की, साथ ही बातें होंगी खेल संसार की। लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 5:30 से। शाम सुहानी कार्यक्रम होगा शाम 6:10 से। गूंजे स्वर गांव के सुनिएगा शाम 6:30 से। कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 6:45 से। कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। साथ ही प्रगतिशील कृषक श्री दयाशंकर जिला अंबेडकर नगर से पूनम वर्मा की भेंट वार्ता भी आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम विवरण सुनिएगा शाम 7:15 से। शाम 7:30 से विशेष भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में श्री अनिल श्रीवास्तव अपर महानिदेशक प्रसार भारती से उष्मा वर्मा की गई बातचीत। गीत गुंजन सुनिएगा रात्रि 8:15 से। महफिल गजल कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 से। और हेलो अयोध्या होगा रात्रि 9:30 से। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
4: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं

0: उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
1: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू

0: रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त जय माला।

0: नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम पॉप एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अरे अब तक घंटी नहीं बजी, 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज?
1: अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है।
0: फिर क्या बात है, आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछे।
1: हाँ हाँ चलो।
0: शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज?
2: क्या बताऊँ, कहाँ मर गए आज सबके सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
2: सर रामरथ अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा?
3: हाँ शर्मा जी, वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरथ अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे।
2: वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर।
3: तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए।
2: सर मालूम हुआ है के फरीद भी आज नहीं आया।
3: ओफो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? राम रख नहीं, वासुदेव नहीं, फरीद नहीं, तो कोई और होगा, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी।
2: सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है? हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। पर आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब, मैं क्या करूँ?
3: यही तो कमी है शर्मा जी आप में, रामरख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं, ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है।
2: सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं?
3: अरे भले आदमी, इसमें करना ही क्या है, 10 कब के बज चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी। जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए।
2: क्या क्या मैं बजाऊं घंटी?
3: क्यों क्या हो गया, अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्स हो जाएगा?
2: सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई।
3: आप भी हद करते हैं शर्मा जी। अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी।
2: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए, मैं बजाता हूँ घंटी, मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे?
3: तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए।
2: जाता हूँ सर जाता हूँ, बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती।
3: कह डालिए कौन सा ख्याल है वो?
2: आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इसी कॉलेज में पढ़ता है,
3: तो
2: अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया तो
3: क्या होगा?
2: तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर।
3: वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे?
2: अब क्या अर्ज करूं सर, घर जवाई क्या बन गया हूँ, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है।
3: तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा।
2: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ बजाता हूँ घंटी।
4: मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
3: हाँ हाँ आओ आओ, क्या बात है?
4: सर मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए, अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है।
3: क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो।
4: सर वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
3: मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की?
4: हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं।
3: तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो? हाँ?
4: इसमें बुराई ही क्या थी सर, एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला, मैंने सहपाठी समझ कर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने एक दो बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी, बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए।

0: में मेरा क्या कसूर है?
1: पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो?
0: आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर। मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा। इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हूँ ये अच्छा नहीं है सर, इसमें मेरी बदनामी होती है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं।
1: अच्छा, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ अपनी क्लासों में। यशपाल, तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए।
2: जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव, ओहो वासुदेव भी छुट्टी पर गया है।
1: तो क्या बात थी यशपाल?
3: बात कुछ खास नहीं थी सर, सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था। मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया, बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौ बता गई।
1: हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा कि उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी?
3: कैसे बताऊं सर, शर्म आती है।
1: बहुत खूब, शर्म आती है और वो भी तुम्हें। अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है? वक्त खराब मत करो मेरा, बोलो क्या बात थी, जल्दी बोलो।
3: सर वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ।
1: आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा, जवाब दो।
3: सर सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था।
1: क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का?
3: सर हम दोनों एक दूसरे को।
1: हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को?
3: सर बात ये कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को।
1: रुक क्यों गए, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सुजाता को और सुजाता तुमको। क्या
3: असल बात ये सर कि हम दोनों एक दूसरे को
1: प्रेम करते हैं?
3: ये सर
1: प्यार करते हैं?
3: जी हाँ।
1: मोहब्बत करते हैं, यही ना?
3: जी हाँ सर, जी हाँ।
1: गधे हो तुम अव्वल दर्जे के।
3: जी
1: तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है। सुजाता तुमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती।
3: मगर सर वो
1: तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरी लड़की की इज्जत का।
3: मैंने क्या किया है सर, सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं।
1: लगता है कि शर्म और अक्ल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजा जी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहाँ से आई?
3: सर मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, बस बात बढ़ गई।
1: तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े।
3: सर मैंने किसी को बदनाम नहीं किया।
1: बको मत, चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है, उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे, उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा, पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल दूं?
3: नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं खताबार हूं, कसूरवार हूं। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा।
1: कौन है ये दोस्त?
3: मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर।
1: क्या सिखाया था उन्होंने?
3: यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाएं तो हम भी माने कि उसमें कुछ है।
1: और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारी कोई बहन है?
3: हाँ सर दो बहनें हैं।
1: फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो, जवाब दो।
3: सर ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता।
1: तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं?
3: सर सच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर बैठा, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ।
1: बस बस ठीक है, मेरे पाँव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुंचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा, वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे?
3: मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर, पहले आप तो क्षमा कर दीजिए।
4: मैं अंदर आऊं सर?
1: आइए
4: सर।

0: कामरख आ गया है।
1: कामरख आ गया है, कहाँ है?
0: बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है।
1: अच्छा, अंदर भेजिए उसे।
0: जी बहुत अच्छा सर।
2: जयराम जी की साहेब।
1: जयराम जी की। अब तक कहाँ थे तुम?
2: अस्पताल गए थे साहेब।
1: अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल?
2: बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहेब।
1: बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे?
2: कुछ काम से गए रहे साहेब।
1: बीमारी का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है?
2: होता है साहेब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है।
1: क्या होता है, कुछ बोलोगे भी?
2: साहेब हम खून देने को गए थे।
1: खून? कैसा खून?
2: अपना खून साहेब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई, अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहेब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
1: अच्छा।
2: कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन ओआर रकम का खून मिल नहीं रहा है और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहब, पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है, इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया, इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर हैं साहब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहब।
1: शाबाश रामरख, शाबाश। सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया कि उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूँ। ये लो दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो।
2: नहीं साहब, नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे।
1: क्यों?
2: अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहब।
1: रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ, शरीर में कुछ कमजोरी आ गई होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया।
2: नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है, हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब।
1: फिर भी रामरख, बात मानो और ये रुपए रख लो भैया।
2: हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब।
1: अच्छा, तो घर जाकर आराम ही करो, हम खुद घंटी बजा लेंगे।
2: पर साहब, घंटी बजाने का काम तो हमारा है ना।
1: अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और आराम करो।
2: अच्छा साहब, जाता हूँ। मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे।
1: अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा अब तुम जाओ।
2: अच्छा साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते। यशपाल
3: जी,
1: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
3: हाँ सर।
1: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
3: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
1: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
3: हाँ सर।
1: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है यशपाल। ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है, अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बने।
3: यस सर।
4: प्रेम दीवाना, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुत करता थे पुरुषोत्तम दारवेहकर।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: गीत गुंजन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गाना आपके लिए विरासत फिल्म से लेकर आए हैं, कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: हेलो
5: सुनो, टेलीफोन नंबर,
6: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
7: कार्यक्रम में आप सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना फिल्म उमराव जान से, आवाजें अलका याग्निक और सोनू निगम की।

0: सन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: सुनत हो सखी सुनत हो कार्यक्रम।

0: मंगना माँ होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: श्रोताओं इस समय दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है जिससे हम सभी को बचने की आवश्यकता है। खासकर एक वर्ष से कम आयु के शिशु या छोटे बच्चे जितने भी हैं, गर्भवती महिलाएं, ये सभी बाहरी वातावरण में कार्य करने वाले व्यक्ति हों, बीमार व्यक्ति विशेषकर हृदय रोगी या उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में जा रहे हैं, इस समूह के लोग सामान्य आबादी की तुलना में हीट वेव यानी लू के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इन समूहों के बचाव पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में भी हैं तो अधिक से अधिक पानी पिएं। यदि प्यास न लगी हो तब भी पानी पिएं, पानी साथ लेकर जाएं अपने। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी है, चावल का पानी जिसे माड़ बोलते हैं, नींबू पानी, छाछ, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अधिक से अधिक मतलब आपको पानी की मात्रा शरीर में रखनी है, उसकी कमी ना होने पाए, इसके लिए आप मौसमी फल जैसे और सब्जियों जैसे तरबूज है, खरबूज है, संतरे हैं, अंगूर है, अनानास है, खीरा, ककड़ी, सलाद, ये सब का भी उपयोग कर सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहने, खुले में कार्य कर रहे हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे, धूपी चश्मे को पहने। पैरों में जूते चप्पल का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर गर्मी से आपको बचना है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय दिन में और लगातार इसके लिए अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम गीत गुंजन में अब अगला गाना आपके लिए केके की आवाज में द किलर फिल्म से लेकर आए हैं आपके लिए, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: कार्यक्रम में अगला गाना सुर फिल्म से लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, गीत निदा फाजली का और संगीत एमएम करीम का।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके ठीक बाद न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month.

0: India for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
3: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnership.

0: एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: कार्यक्रम में पेश है पहली गजल सोनाली और रूप कुमार राठौर की आवाज में। इस गजल का कलाम है परवीन शाकिर का।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल आप तक पहुंच रही है, कलीम चांदपुरी का कलाम।

0: इसी गजल के साथ कार्यक्रम महफिले गजल से अब दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22।

0: 22।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सूरज सिंह। डायल करें नंबर 7376-80-40-90, कीजिए हमसे बातें, सुनिए अपने पसंद का गाना। हेलो
4: हेलो, नमस्ते सर।
3: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया सर आपने?
4: सर हमने कॉल किया है सर बारूंग बाजार है।
3: नाम बताइए अपना।
4: निशांत।
3: निशांत, क्या करते हैं निशांत जी?
4: सर यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, तैयारी करते हैं सर।
3: अच्छा, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं?
4: जी जी, प्रोग्राम आपके सुनते हैं ज्यादातर, खासकर ये रेलो अयोध्या और आपके जो ये गीत गुंजन है, बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं। और सर आपने आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, आज का पूरा आपका प्रोग्राम मैंने सुना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। आज गीत कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में?
4: सर गीत सुना दीजिए, ये दिल आशिकाना का टाइटल सॉन्ग।
3: ये दिल आशिकाना का
4: जी
3: टाइटल
4: जी। और सर आप कैसे हैं?
3: बढ़िया
4: जी है। आप ये जो अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं सर, मुझे बहुत ही प्रसन्नता इससे होती है सर।
3: हाँ।
4: गर्मी हो रही है इस वक्त की, उसके बारे में कैसे बचे उससे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी से समय समय पर आपको बहुत तरह की जानकारियां दी जाती हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी हम लोग इसीलिए करते हैं। ठीक है
4: जी
3: जी, बिल्कुल आकाशवाणी ऐसे ही आप सुनते रहें। सुनिए अपने पसंद का ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, फिल्म ये दिल है आशिकाना से।
4: सर आपसे मिलना चाहते हैं वैसे, सर कैसे आप मिलेंगे सर हमें?
3: हम लोग आकाशवाणी में आप आए, आकाशवाणी के कार्य दिवस में किसी भी दिन, तो हाँ मुलाकात हो सकती है। ठीक है,
4: थैंक यू।
3: ओके, सुनिए अपने पसंद का ये गीत।
4: ओके।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: हेलो हेलो
8: हेलो
7: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना।
8: नमस्ते
7: जी।
8: नमस्ते सर।
7: क्या नाम है, नाम थोड़ा सा तेज बोलें।
8: शिवानी पाल।
7: शिवानी पाल, कहाँ से किया कॉल किया आपने?
8: कुचेरा बाजार मालिक कपड़ों से।
7: कुचेरा बाजार से। ठीक है, क्या करती हैं शिवानी जी?
8: कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते हैं।
7: तो आज कौन सा गाना सुनेंगी कार्यक्रम में?
8: बादल का।
7: बादल, बादल फिल्म से कौन सा गीत सुनवा दें?
8: समय से आते हैं।
7: अच्छा, बॉर्डर आपने बोला है, हम सोचे बादल बोल रही हैं। हेलो।
8: हाँ सर।
7: बॉर्डर फिल्म से।
8: यस।
7: ठीक है, आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
8: यस सर।
7: नमस्ते।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हेलो, तिहत्तर छिहत्तर अस्सी चालीस नब्बे, ये नंबर डायल करें, करिए हमसे बातें, सुनिए अपने पसंद का गीत। हेलो
4: हेलो सर, नमस्ते।
3: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया सर?
4: चंद्रप्रकाश यादव, विक्रम यादव।
3: चंद्रप्रकाश यादव, विक्रम जोश से। हेलो
4: जी सर,
3: कैसे हैं सर?
4: अच्छे हैं, अच्छे सर, बहुत अच्छे।
3: प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे?
4: जी जी, बराबर सुनते हैं।
3: और कैसे प्रोग्राम लगता है हमारा?
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है सर।
3: तो कौन प्रोग्राम से प्रोग्राम अच्छा सबसे बेहतरीन लगते हैं आपको, जिसे आप चूकते नहीं है कभी सुनने से?
4: हेलो
3: जी, कौन सा प्रोग्राम ऐसा लगता है जिसे आप कभी नहीं छोड़ते, रोज सुन लेते हैं आकाशवाणी अयोध्या का?
4: हम हेलो पहली भी सुनते हैं, जो दोपहर में आता है फरमाइशी गाना, कई प्रोग्राम है जो सुनते हैं।
3: अच्छा, तो आज क्या सुनेंगे, गीत कौन सा सुनेंगे?
4: आज मुझे सबसे बड़ा खिलाड़ी का गाना सुना दीजिए, हर दिल में हर व्यवस्था।
3: सबसे बड़ा खिलाड़ी
4: जी सर।
3: इस फिल्म से कौन सा गाना?
4: हर दिल में है रब बसता।
3: हर दिल में है रब बसता, ठीक है, आपको सुनवाते रहिए गीत। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: हेलो, अयोध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते, नाम बताइए अपना, कहाँ से कॉल किया?
3: सर हम हेलो फिर बात बोल रहे हैं ना सर?
2: जी जी हेलो, अयोध्या चल रहा है ये?
3: जी सर, हमारा नाम सर अनु रावत है।
2: अनु रावत
3: सर
2: जी, कहाँ से कॉल किया है?
3: जी सर गाना सुनना था।
2: अपनी जगह का नाम बताएं पहले।
3: सर हम सारंगापुर से बोल रहे हैं।
2: कहाँ से?
3: सारदापुर
2: से।
3: जी सर
2: जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में? हेलो
3: जी सर,
2: गीत कौन सा सुनेंगे आज?
3: आप आए बाहर आई फिल्म से गाना सुनेंगे।
2: आप आए बाहर आई फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगी? हम बोल रहे हैं गाने के, आप आए बाहर आई का टाइटल सुनेंगे?
3: नहीं नहीं सर।
2: कोयल क्यों गाई?
3: जी सर।
2: मुझे तेरी मोहब्बत का कोयल क्यों गाई, पूछे जो कोई मुझसे?
3: नहीं सर।
2: तारे कितने नील गगन पे?
3: नहीं सर।
2: तो कौन सा सुनना है तुमको भी? तो
3: मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया।
2: ठीक, तो यही गाना सुनवा दे रहे हैं आपको। और क्या करती हैं आप?
3: सर हम कुछ भी करते हैं सर, घर पर रहते हैं।
2: जी जी ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का यह गीत। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए अपना। हेलो,
1: जी,
0: अयोध्या में
1: हमारा
0: आपका
1: नाम
0: स्वागत
1: जया
0: है।
1: कौशल
0: जया कौशल,
1: जी।
0: कहाँ से आपने कॉल किया है?
1: जी हम बड़ी देर काली अयोध्या से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं, घर पर
0: जी,
1: रहते हैं।
0: कार्यक्रम सुनती हैं हमारे?
1: जी
0: हमारे कार्यक्रम सुनती हैं आकाशवाणी अयोध्या के?
1: सर, इस समय हम जिस एफएम को सुनते थे वो उसमें जो अरे और भी जिसे है ना लोकल वाला
0: जी
1: वो
0: जी
1: पकड़ने लगा है, आपका प्रोग्राम हम नहीं सुन पा रहा है, लेकिन कॉल लग गया।
0: अच्छा, जिस एफएम पे सुनती हैं उसमें बाकी एफएम भी पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये कह रही हैं आप। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, गीत कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: हेलो
0: जी, हमारी आवाज नहीं मिल रही आपको?
1: जी सर,
0: गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: हमको अजनबी पिक्चर का गाना सुनना है। अजनबी
0: अजनबी, कौन सा गाना सुनेंगे अजनबी से?
1: वो अजनबी मूवी का वो गाना जिसमें अरे ये से गाना है, हाँ तुम्हें तुम्हें तुम्हें हम आते हैं। हेलो,
0: हाँ, पुरानी अजनबी ना, किशोर कुमार की आवाज में सुनना है आपको गाना।
1: नहीं, वो पुरानी वाली अजनबी नहीं, उनको अक्षय कुमार वाली अजनबी नई वाली सुननी है।
0: वो अजनबी तो नहीं है हमारे पास, पुरानी वाली
1: वो
0: अजनबी
1: नहीं
0: है।
1: तो कोई दूसरा गाना बता दो सर। हेलो,
0: बताइए। हाँ बताइए, थोड़ा जल्दी करिए।
1: तो आप हमको इसका गाना सुना दीजिए, अरे ये गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गाने सोच के रखा
1: गाने
0: करिए पहले प्रोग्राम में। हेलो,
1: कुली नंबर वन का गाना सुना दीजिए।
0: कुली नंबर वन से?
1: हेलो,
0: जी
1: एक ही दोपहरी में।
0: अच्छा, ये गीत।
1: हेलो,
0: जी, हेलो।
1: अगर तुम्हें नंबर वन का गाना सुना दीजिए, देश की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: ठीक
1: ये
0: है।
1: तो

0: होगा
1: कूली नंबर वन तो मिलना चाहिए, कोशिश कर रहे
0: हेलो।
1: हैं जी। हेलो,
0: हाँ सर, गाना मिल
1: हेलो,
0: गया
1: कुली नंबर वन भी नहीं दिख रही है हमारे पास। हेलो
0: हेलो। हाँ सर,
1: जी, कुली नंबर वन भी नहीं है।
0: वो भी नहीं है।
1: नहीं,
0: तो आप अपनी पिछले गाना सुना दीजिए
1: हाँ तो यही, आप पहले कहीं होते तो इतना टाइम वेस्ट ना होता। ठीक है, फिर हम आपको
0: जी।
1: सुनवा दे रहे हैं गाना, ठीक है।
0: आप
1: आकाशवाणी
0: अपनी
1: में आपने
0: फिल्म
1: कॉल
0: सुना
1: किया,
0: दीजिए,
1: बहुत
0: अगली
1: बहुत
0: बार हम
1: धन्यवाद।
0: फोन करेंगे तो अपना पसंद बताएंगे। ठीक है
1: ठीक
0: सर,
1: है, सुनिए एक गीत,
0: नमस्ते
1: काइट्स फिल्म
0: सर।
1: से आपको सुनवा दे रहे हैं, के की आवाज में। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या से अपने रेडियो साथी सूरज सिंह को अब दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी रूप से सहयोग दिया अरविंद कुमार जी ने।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण प्रश्न

0: भूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
1: जी,
0: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
1: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिए में, जैसे मूसाखाण बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, वो अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरु जी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
0: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है, एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है
1: जी।
0: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है
1: जी।
0: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी है उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में?
1: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौर उस अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहाँ हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्स्टलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं, कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे, हमें इतना अच्छा लगा। जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है।

0: इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक थे उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं वो हमसे हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है। इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को उन प्रतिभावान बच्चों को कि आकर के अपने दमखम का अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं प्रदेश ही नहीं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे हमारा लड़का एक यहां पर खिलाड़ी था राम सिंह ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरई गांव का रहने वाला लड़का है संतोष कुमार भी चिरई गांव का ही है। ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला यहां रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया और अर्जुन पुरस्कार जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है धानापुर में एक गांव है डबरिया उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था सड़क पर पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी स्पाइक भी नहीं थी नंगे पैर दौड़ते थे पैर छिल जाते थे लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं हमें खेल करना है हमें जीतना है हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं मैं करूं और मैं खिलाड़ियों को बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूं कि नहीं ये करो। जैसे एक लड़की आरती है यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र ही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव हरहुआ ब्लॉक की है और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये 6वां स्थान प्राप्त किया जो गांव की रहने वाली थी जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी कभी वॉलीबॉल खेलती थी कभी कुछ करती थी बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है इसको मैंने जेवलिन में डाला और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल सारे जगह मेडल और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का लाने का उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए 2-4-5 उदाहरण आपने दिए इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल बढ़ाने की आवश्यकता
1: है। जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे जब भी हम लोग छोटे थे गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा तो गार्जियन को यह बताना है पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब यह कहावत चलती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है और गांव में जो चीजें मिलती हैं शुद्ध हवा शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध दूध तो शहर की अपेक्षाकृत गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है जैसे स्कूल लीजिए, पोल वॉल्ट है इतना महंगा है खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी, जेवलिन है 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है कहां

0: से खिलाड़ी जितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा, तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है। प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां के युवा खिलाड़ी चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों निकल करके आएं और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे आगे बढ़ेंगे तो अपने राज्य का अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA MPED डिप्लोमा कराया, छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना है, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि वैसे पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं और उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की, तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं, वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट, कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा, तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
4: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है, और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घुड़सवारी में या घुड़दौड़ में ना राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना,

0: वो उसकी हार्ट बीट से जो थक्की देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनेज में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पर आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉल्ट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, क्योंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों, जय हिंद।
2: जय मैम।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय गाजीपुर से।
5: मैं आरती सोनभद्र से।
6: मैं शिवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
10: मैं रीचा यादव बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल आयर से।
12: प्रशिष्टी मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव जौनपुर से।
14: पलक यादव चंदौली।
15: अपूर्वा गुंजा फिरोज आवाज।
1: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का।
17: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहता तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते, वर्कआउट के बाद 8 बजे फिर नाश्ता करते,
18: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
19: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
19: मेरा नाम खुशी पटेल है। मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए। फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो गया 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी, आप क्या खेलती हैं?
19: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा। प्रशिष्टी, आप क्या खेलती हैं?
20: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
20: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ, और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
0: मुश्किल नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है और ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
0: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम। अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी, मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए, और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
0: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
0: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित

0: होता है सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है अगर सामान चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रद्धा बातचीत के सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया DHU कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
0: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
0: मैडम, ये बता देंगे, एक जो BHU सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल की बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
0: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
0: सुविधाओं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है या जो भी सुविधाएं हैं
1: जी,
0: वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस BHU कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
0: जी हाँ बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
0: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेन्यू तैयार वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेन्यू है, वो उस पर दिया जाता है। फिटनेस की बात पे, अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि ये फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जम्पर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर IAS विशेष कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है?
0: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही
0: एक अकेला

0: काफी है और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग आर्चरी रेसलिंग एथलेटिक्स तो बहुत तेज से विकास हो रहा है और हर एक गांव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहां का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है और आधारभूत सुविधाएं वहां पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहां से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है मैम। मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है मैम। अब ये बनारस है, छोटा सेंटर है लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
0: हाँ मैम, बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती हैं तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं और देश का प्रतिनिधित्व भी हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे हमारे लखनऊ केंद्र से। हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान

0: कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world.